0: शिक्षा की पद्धति में या उस व्यक्ति की सोच में कोई कमी रह गई। प्रेम और सहानुभूति जैसे सद्गुणों के विकास के लिए ये आवश्यक है कि घृणा को हृदय में कोई स्थान न मिले। विचारों की शुभता जीवन में कैसे प्रवेश पाए, साथ ही विचार कैसे तेजस्वी हो, विचारों में सकारात्मक का प्रवेश कैसे हो, इसके लिए आवश्यक है नकारात्मक चिंतन पर विराम लगाना और सकारात्मक चिंतन को स्थान देना, उत्कृष्ट और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, नियमित दिनचर्या, घर में पवित्र वातावरण का सृजन, गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा और प्रतिदिन उस शक्ति से प्रार्थना कि हमारा हृदय शुभ विचारों से युक्त हो। विचारों की श्रेणी भी जीवन में विभिन्नताओं से युक्त होती है। आप स्वयं के विचारों का परीक्षण कर सकते हैं। मंद विचार, मध्यम विचार, उग्र, प्रचंड या तीव्र विचार। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जैसे चित्र की कल्पना करता है, जैसे विचार बनाता है, वो वैसे ही जिंदगी प्राप्त करता है। आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने मन मस्तिष्क में उन्हीं विचारों को प्रवेश दे और उसी पर चले। जीवन में चाहे विपरीत आंधियां चल रही हो, चाहे आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, दुख के कारण आपकी आंखों के सामने घोर अंधेरा छा रहा हो और कोई मार्ग ना सूझ रहा हो, तब भी अपने सपनों को और अपने विचारों को कभी ना टूटने दीजिए और विचारों पर दुख की धूल भी कभी ना जमने दीजिए। भारतीय परंपरा में अनादि काल से सत्य, अहिंसा और त्याग बलिदान का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। भगवान बुद्ध और महावीर ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सिखाया, किंतु महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ईश्वर का दर्जा प्रदान कर व्यवहारिक जीवन में उन सिद्धांतों को स्वयं जीकर दिखलाया। इस प्रकार परंपराओं से प्राप्त विद्या तथा आसपास के वातावरण और पुस्तकों से प्राप्त शिक्षा का प्रतिपल व्यवहारिक उपयोग करते हुए नकारात्मक तत्वों को छोड़कर सकारात्मक चिंतन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है और उसकी कीर्ति चिरकाल तक अमर रहती है।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शिक्षा का महत्व के संबंध में विचार, वाचिक स्वर था मंजुला नेगी का। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं ये मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए ज्ञान बल बुद्धि के दाता रिद्धि सिद्धि के विधाता भगवान गणपति का सुमिरन करते हैं जो देवों में प्रथम पूजनीय है और सुनते हैं कार्यक्रम में ये पारंपरिक भक्ति रचना।

भगवान बद्री विशाल से आप सभी की सुख समृद्धि सर्व सिद्धि और कल्याण की कामना करते हुए आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण और नंदिनी शरण की स्वर में कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना।

श्री रामचरित मानस गान में लिखा गया है, काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरकी पंत, सब पर हरि रघुबीर ही भजू भजी जेही संत। रिमन, ये काम क्रोध लोभ मद ये सब नरक के मार्ग हैं, इनको त्याग कर प्रभु राम का गुणगान कर जो तुझे सत मार्ग पर ले जाएंगे।

इस शब्द के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत पद पाठ, कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के बीच के साथ विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम में दिन में 11 बजे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट और रात्रि 10 बजे रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा रिले किए जाएंगे। नमस्कार देहरादून, ये दैनिक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। रात्रि 8 बजे काव्यांजलि के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर पुष्पा रानी वर्मा से उनकी काव्य रचनाएं। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडल होगा दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे पूजा अरोड़ा की वार्ता। विषय रहेगा बच्चों में बीमा और बचत के प्रति जागरूकता। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज श्रोता सुनेंगे श्रोताओं की अनुरोध माँ। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा रूही पोपली का ख्याल गायन। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे राकेश सिंह के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में तीजन भाई और साथियों से पंडवानी लोकगीत आप सुन पाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 का समय रहेगा सामुदायिक गान का। सुगम संगीत के अंतर्गत राजेंद्र नीना मेहता की गायी चंद गजलें प्रसारित की जाएंगी रात्रि 8:15 पर। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत। विचार आपके गीत हमारे, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 9 बजे। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे सुबह 10:12 पर, 1:15 पर, दोपहर 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, दिन में 3 बजे, शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर, रात को 8:30 पर, रात को 9:30 पर फिल्म संगीत में। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् पञ्चत्रिंशोत्तरैकशततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणं आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमंत्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतं उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह संपर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः

0: विराजितम्। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदा युकिमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू लेयुंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyana, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to the Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar this evening. This new initiative is aimed at improving health care tracking and welfare accessibility for families. Earlier in the day, Mr. Shah will attend a special Chintan Shivir for booth presidents and Shakti Kendra in charges in Ahmedabad, during which he will review grassroots strategies and interact with local party members. The Ministry of External Affairs has issued an advisory to Indian citizens undertaking the Kailash Mansarovar Yatra through tours organized by private tour operators. In a statement, the ministry said it is in receipt of several requests for help and assistance from Indian citizens stuck in Nepal while undertaking Kailash Mansarovar Yatra without the required entry permit and visas for China. It said citizens are advised not to commence their journey from India until all the required travel documents have been obtained for undertaking the complete journey. Union Ministers of State for Health and Family Welfare, Anupriya Patel, has said that India has made significant progress in healthcare over the past 12 years and is working toward the broader goal of universal health coverage, ensuring accessible, affordable and quality healthcare for every citizen. Speaking at the 9th edition of the Doctors' Day Conclave of a private media channel program, Ms. Patel highlighted Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana as one of the world's largest health assurance programs, covering around 62 crore people, and said it is helping families access treatment with financial protection. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugale to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case. The move comes after Bhiwandi Police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting three alleged members of the racket. The death toll in Venezuela's earthquakes has risen to 1,430. The latest figures were released as rescuers continued the search for survivors of the 1-2 punch of 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes that devastated the South American nation on Wednesday. In the FIFA World Cup, England defeated Panama 2-0 in their Group L match at New Jersey Stadium in the United States this morning. Jude Bellingham and Harry Kane scored a goal each as England secured the top spot of Group L. Goa's 14-year-old international master Ethan Vaz has become India's 96th chess grandmaster after securing his third and final grandmaster norm at the Sarajevo GM Mix tournament in Bosnia and Herzegovina. And that is the end of this news bulletin.
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 7:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए भूले बिसरे गीत।

0: सफर है हो।
1: मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के

ये स्वर थे आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की। फिल्म का नाम था श्री 420। गीत था शैलेंद्र का और संगीत शंकर जय किशन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये अगला गीत। नौशाद का संगीत, बोल हैं शकील बदायूनी की, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है सोहनी माहिवाल।

0: अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरी गीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 में ही लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, अंगदान मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य है जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में आज पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी और राज्य सरकार आगामी 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त करेगी। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि अंगदान मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य है जिसके माध्यम से गंभीर रूप से जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने अंगदान को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समझने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नड्डा हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में दधीची अंगदान संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान और अंग प्रत्यारोपण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचे का विकास किया गया है और राज्यों में भी इससे जुड़े संगठनों को सक्रिय किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अंगदान के अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
2: सभी से ये निवेदन करूंगा कि हम लोग इस कार्यक्रम में अपने आप को शामिल करें और ये जो संकल्प हम लेंगे ये समाज को एक नई दृष्टि नई दिशा तो देगा ही, साथ ही साथ लाखों लोग जो आज अंग की आवश्यकता में हैं उनको नया जीवन प्रदान करेगा और समाज को एक तरीके से उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। और जो हम कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मृत्यु के बाद भी यदि किसी व्यक्ति के अंग किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सके तो इससे बड़ा मानव कल्याण का कार्य कोई नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज और DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारण करेगी। देहरादून की जीवनदायिनी रिस्पना नदी के संरक्षण पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन ने मिशन मोड में कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि विभिन्न विभागों के समन्वय से एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल नदी की सफाई करना नहीं बल्कि रिस्पना को देहरादून की पर्यावरणीय धरोहर के रूप में विकसित करना है।
3: रिस्पना रिवर को लेके हम लोगों ने जो रिजुविनेशन का एक एफर्ट कुछ समय पहले स्टार्ट किया, इसी क्रम में आज हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हुई और मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट टर्म में हम किन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसे कवर किए जाएंगे। फर्दर जो निचले इलाके हैं, क्योंकि पूरी 22 किलोमीटर की रिवर में इनिशियल 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें डेंस फॉरेस्ट और अलग किस्म के प्लान की जरूरत होगी और नीचे वाले एरिया में गार्बेज पॉइंट जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं या जहां पे बहुत ज़्यादा मलबा या कचरा जमा है उन्हें कैसे साफ किया जाना है, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट की मीटिंग थी। इसके लिए CDO साहब को मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि एक टास्क फोर्स भी बनाई जाए और डिलीवरेबल्स को अच्छे से प्लान किया जाए।
1: जिलाधिकारी ने नगर निगम को रिस्पना नदी में गिरने वाले सभी नालों तथा कूड़ा निस्तारण स्थलों का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. चौहान ने बताया कि प्रशासन ने इस दिशा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों पर कार्य शुरू कर दिया है।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: प्रदेश में आज पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य भर में पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल बूथों के माध्यम से बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा कर रहे बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के दूसरे और तीसरे चरण में 29 और 30 जून को आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। राज्य सरकार ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, ताकि उन्हें पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसी क्रम में सरकार आगामी 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को समाप्त करेगी। समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के शिक्षण संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होगी।
5: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। परंतु मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इसको बात को स्वीकार किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। अंतिम डेट हमारी 1 तारीख को दी गई है कि अगर 1 तारीख तक तो संबंध नहीं होते हैं तो फिर कार्रवाई होगी। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
1: मौसम विभाग ने आज से 1 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान पर्वतीय जिलों में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। वहीं कल से मैदानी जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा तथा झोंकेदार हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश में मानसून के पहुंचने की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज से कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों तथा गढ़वाल मंडल की कुछ क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
6: 28 तारीख से उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 28 तारीख में उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर अनेक स्थानों पर और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 29-30-1 में उत्तराखंड में कह सकते हैं मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो अगले 1-2 दिन जो है आज कल में जो है देखेंगे कि गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर जो विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड के वहां मिल सकती है।
1: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने संभावित खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को आज भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। अमर उजाला का शीर्षक है, लंबी फजीहत के बाद आखिरकार चंपत राय व अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। हिंदुस्तान लिखता है, मंदिर की जमीन से जुड़े सौदे भी जांच के घेरे में। कर्णप्रयाग निहंग प्रकरण पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए आरोपित निहंग। पश्चिम एशिया तनाव पर नवोदय टाइम्स लिखता है, अमरीका ईरान ने फिर किए हमले। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, अंगदान मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य है जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में आज पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी और राज्य सरकार आगामी 1 जुलाई से मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त करेगी। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। निजी कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए राकेश सिंह के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर सुभाष चंद, तबले पर विकास मैठानी, होड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आशीष भट्ट। तो आइए सुनते हैं राकेश सिंह के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में, क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: आइए आपको सुनवाते हैं राकेश सिंह का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

0: फ्रस्ट्रेशन बाइक के एक्सीलेटर पर क्यों?
1: यार 12वीं के बाद एडमिशन कहाँ लें? ऐसा कॉलेज चाहिए जहाँ करियर सच में बने।
0: मैंने तो चुन लिया राज बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून, 40+ करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, अनुभवी फैकल्टी और शानदार अवसर। अप्लाई नाउ admission@rbbsu.edu.in। कॉन्टैक्ट नंबर 8043541070।
2: सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। सफलता के कदम सुभारती।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
3: शैल संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं राकेश सिंह की गाई गढ़वाली लोकगीत।

0: राकेश सिंह के गाइस गढ़वाली लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आपके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर सुभाष चंद, तबले पर विकास मैठानी, हुड़का पर गणेश लाल, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर आशीष भट्ट। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
3: Today we have a new national health policy.
4: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
3: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
5: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम

0: वाली है। उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले टीईटी के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

0: अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स के नेशनल असेंबली

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए सूचना पर कार्यक्रम। नमस्कार देहरादून।

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से श्रोताओं, आज रविवार का दिन और आप सभी का स्वागत कार्यक्रम नमस्कार देहरादून के आज के अंक में। श्रोताओं, हर दिन हम सबकी इच्छा होती है कि हर दिन अच्छा भी थे, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता और बुरा समय किसी को कहकर नहीं आता और किसी के लिए कभी भी हो सकता है। पर श्रोताओं, ऐसे समय में हमारी मदद हो सकती है हमारी छोटी छोटी बचत और बीमा योजनाओं से, जिनसे हम मुश्किल समय में आसानी से अपने आप को संभाल सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। और श्रोताओं, इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है 28 जून को, जिसका उद्देश्य है लोगों और व्यवसायियों को जीवन बीमा और सामान्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, वाहन बीमा, घर का बीमा आदि के बारे में सही व सटीक जानकारी और उसके महत्व के बारे में प्रचार प्रसार करना, ताकि किसी प्रकार की भ्रामक और गलत जानकारी से हम बच सकें और उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। श्रोता, इस प्रकार की जानकारी हमें सही समय पर संबंधित व्यक्ति से मिल जाती है, पर्याप्त रूप से मिलती है, तो इसका हम लाभ उठा सकते हैं और भविष्य में होने वाले असमय और अचानक से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं और आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं और निराशा के इन पलों को हम आशावान बना सकते हैं और खुशीपूर्वक अपने जीवन को बिता सकते हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार, देहरादून FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर। श्रोताओं, अब जानते हैं अखबारों के पन्नों की सुर्खियां। उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट, बढ़ाई गई निगरानी। डोईवाला में खुलेगा प्रदेश का पहला हिलॉन्स आउटलेट, स्वयं सहायता समूह को मिलेगा बड़ा बाजार। पेट्रोल पंपों से देश भर तक पहुंचेगा पहाड़ का स्वाद। रैगिंग मामले में 3 छात्र निलंबित, सवालों में स्पोर्ट्स कॉलेज प्रशासन। सीमा पर छठा संकट का साया, 2 दिन बाद हालात सामान्य। गुलहाल बॉर्डर पर टला टकराव, पुलिस और प्रशासन ने ली राहत की सांस। अंगदान मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य, नड्डा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ददेची अंगदान संकल्प अभियान के तहत सैकड़ों लोगों ने लिया अंगदान का संकल्प। मलबा आने से 3 घंटे बाधित रहा यमुनोत्री हाईवे, यात्री रहे परेशान। मॉनसून की उल्टी गिनती शुरू, भारी बारिश के चलते देगा दस्तक। मॉनसून की तैयारियां, 5 जोन में बांटा शहर। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में रहेगी विशेष नजर। फास्टैग से खुलेगा मसूरी के जाम का रास्ता, स्थानीय वाहनों को मिलेगी छूट। दून अस्पताल में 3 माह में शुरू होगी किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट। उत्तराखंड के सभी जनपदों में खुलेंगे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र। जुलाई से जिले में 3 फेज में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर, 6 ब्लॉकों में 42,000 डॉक्टर देंगे सेवा। कुमाऊं में 3 और गढ़वाल मंडल में 4 नए कॉलेज खुलेंगे। और अब मौसम संबंधी जानकारी। श्रोताओं, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर में गरज चमक के साथ तीव्र वर्षा के दौर हो सकते हैं। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा के आसार हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी वर्षा हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और अंधड़ चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मानसून आगे बढ़ते हुए अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश को कवर करता है, उत्तराखंड की सीमा में पहुंच सकता है और आगामी 1 जुलाई से प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा के दौर शुरू हो सकते हैं। ये थी मौसम संबंधी जानकारी। और अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं कि आज 28 जून का इतिहास क्यों है खास। श्रोताओं, आज ही के दिन 28 जून 1838 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का लंदन के वेस्टमिंस्टर में राज्याभिषेक हुआ। 28 जून 1919 को प्रथम विश्व युद्ध वर्सायल शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। आज ही के दिन 1932 में इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में 3 दिवसीय टेस्ट मैच में भारत को 158 रन से हराकर टेस्ट सीरीज जीती थी। और 28 जून 1941 को जर्मन सेना ने पोलैंड के गैलिसिया पर कब्जा किया था। आज के दिन 1952 में दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला को पहली बार 1952 में कैद किया गया था। 28 जून 1965 को पहले वाणिज्यिक उपग्रह अर्ली बर्ड एक संचार सेवा शुरू की गई थी और 1976 में पहली महिला US एयरफोर्स एकेडमी में भर्ती हुई। 28 जून 1981 को चीन ने इसी दिन कैलाश और मानसरोवर का मार्ग प्रशस्त किया था और 28 जून 2004 को 17वां उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन इस्तांबुल तुर्की में शुरू हुआ था। और श्रोताओं, आज के दिन रूस ने ईरान के लिए 6 परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की थी। और ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी। और आइए बाबू आपका मनोरंजन करवाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

कार्यक्रम नमस्कार देहरादून प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में देश का पहचान दिलाने वाले प्रमुख निशानेबाज थे जसपाल सिंह राणा, जिनका जन्म आज के दिन 28 जून 1976 को उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता नारायण सिंह राणा BSF अधिकारी रहे हैं, जो इनके कोच भी रहे हैं। श्रोताओं, इन्होंने पहली बार 1988 में 12 वर्ष की उम्र में 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था और वहां इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था। 1984 में 46वीं विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और ये इनके करियर में महत्वपूर्ण साबित हुआ। और इसके बाद श्रोताओं, इन्होंने निशानेबाजी में अनेक पदक प्राप्त किए। वर्ष 2005 में दोहा एशियाई में इन्होंने 3 गोल्ड 1 सिल्वर कॉमनवेल्थ खेलों में प्राप्त किया था। इस तरह से इन्होंने कुल 15 पदक प्राप्त किए थे। वर्ष 2005 में मैनचेस्टर खेलों में इन्होंने अकेले 6 पदक जीते थे। वहीं 2006 में मेलबोर्न खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा खेलों में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही इन्होंने अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन के साथ साथ देश का नाम रोशन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम मान बढ़ाने के लिए अनेक खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। पर श्रोताओं, 12 जून 2006 को इनका असामयिक निधन हो गया। खेल जगत के लिए इनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज इनके जयंती पर आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आजकल तेज दमदार जोशीले संगीत का चलन है जो खासकर युवाओं को आकर्षित करता है, और ऐसे ही संगीत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं गायक, संगीतकार और गीतकार विशाल डल्लानी, जिनका जन्म आज ही के दिन 28 जून 1973 को मुंबई में हुआ था, जिन्हें हम विशाल शेखर के संयुक्त निर्देशन में अनेक संगीत रचनाओं को सुनते हैं। साथ ही इन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया है। श्रोताओं, विशाल डल्लानी ने 1994 में वाणिज्य स्नातक की डिग्री प्राप्त की, और श्रोतम बचपन से इन्हें संगीत की प्रति रुचि रही है और इन्होंने संगीत को इसलिए अपना करियर भी बनाया। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1994 में, जहां इन्होंने विशाल इंडो रॉक बैंड पेंटाग्राम के माध्यम से अपनी शुरुआत की थी और उसके ये प्रमुख रहे थे और गायक भी रहे हैं। श्रोतम, इसके बाद संगीत में इन्होंने नित नए आयाम स्थापित किए और कई फिल्मों में शानदार संगीत दिया, जिनमें फिल्में शामिल रही हैं झंकार, पीड्स 10, ओम शांति ओम, बचना ए हसीनो, दोस्ताना अनजाना अनजानी, रावण, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, सुल्तान, बेफिक्र आदि। इस प्रकार से श्रोताओं, इन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और मराठी फिल्मों में संगीत दिया है और ये इनका क्रम अनवरत जारी है। आज इनके जन्मदिन पर इन्हें ढेर शुभकामनाएं देते हुए सुनते हैं इनका संगीतबद्ध किया कार्यक्रम में ये गीत।

श्रोताओं, आपको यह हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। और श्रोताओं, आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हर बार की तरह आज एक नई थीम और साथ ही थीम से संबंधित आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहें सुबह 10 बजे तक। श्रोताओं, बूंद बूंद से भरती गागर, बूंद बूंद से भरता सागर, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। और श्रोताओं, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके बचत को हम एक दिन बहुत बड़ी बचत बना सकते हैं, अपनी रकम को इकट्ठा कर सकते हैं और ज़रूरत के समय ये हमारे काम आ सकती है और देश के काम आ सकती है। पर श्रोताओं, बचत की आदत पूरी नहीं होती है, जिसके अनेक फायदे होते हैं, चाहे वो हमारे गुल्लक, बीमा या बैंक खातों से हो या फिर वहाँ से लेकर हमारे दादा दादी नाना नानी के ज़माने की पोटली पर रहा हो। पर श्रोताओं, बचत पैसों की नहीं हर प्रकार की हो सकती है, जिस तरह से कि पानी और बिजली की बचत। पर श्रोताओं, आप भी अपने इस संबंध में विचार हमें लिख भेजें कि किस प्रकार से आप बचत में विश्वास रखते हैं और क्यों हमें बचत करनी चाहिए, बचत आपके किस तरह से काम आती है। व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर आप लिख भेजें अपने विचार और आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। श्रोताओं, आपके विचार हम तक प्राप्त होते हैं, तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत। हमारे आज के प्रोग्राम की थीम है बचत। जी हाँ श्रोताओं, लिख भेजिए अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। कार्यक्रम में मैसेज को शामिल किया जाएगा और ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप है देहरादून से सुधीर कुमार, लिखते हैं कि बचत की आदत अच्छी होती है और बचपन में तो हम गुल्लक में सिक्के जमा करते थे, पर ये जब गुल्लक भर जाती थी तो बड़ी ही अच्छी लगती थी। सब लोग परिवार मिलजुल कर उस गुल्लक को फोड़ते थे और उसमें से पैसे निकालते थे। जी बिल्कुल धन्यवाद, बहुत ही अच्छी आदत और बचत तो हमें हर किसी को करनी चाहिए और ये छोटी छोटी बचत हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए ताकि ये बचत अच्छी बचत बन सके। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं ये गीत।

0: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार आपके गीत। हमारे आज के प्रोग्राम की थीम है बजट। इससे संबंधित अपने विचार लिख भेजे व्हाट्सएप नंबर 7088888731। हमारे श्रोताओं के लगातार हमें मैसेज मिल रहे हैं। जी हाँ, आपके मैसेज को शामिल किया जाएगा इस अगले कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की बात। 9:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। दिल्ली केंद्र से हम आपके लिए रिले कर रहे हैं
1: आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
3: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है, इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
4: जी देखिये, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है। वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन, जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे, वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं, वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है। बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक SLRM सेंटर है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा SLRM सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है। उस टोकन को लेकर आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
3: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
4: यस।
3: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे?

0: उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर है, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए एक किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 20-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर एक किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दे, टोकन वालों को बाद में दे, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रीडिंग आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके तरफ।
1: यानी कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई,
0: बिल्कुल
1: और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27-28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है, 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया।

0: और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है,
0: नहीं
1: क्या है
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: कैफे असर पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर से अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल है, कई जो पुराने होटल है बड़े होटल वो स्थापित है, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है जो एक कई सामाजिक जो

0: रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज। तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है, गार्बेज कैफे संचालन का एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था। ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा। तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की, वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है। मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है, नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व है इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: लोकेशन पे
1: गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी इन लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है। तो हम सिटीजन के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
1: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना के जैसे बच्चों का, सपोज दैट बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाए फिर प्रेस करते जाए डालते जाए वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसमें सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहे, कंपास देना चाहे, इस तरह की चीजों पे भी।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था, अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब

0: कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कुरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों में एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों से मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से, लंदन, इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान, कोरिया, यहाँ से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी।
0: प्रशंसा आई थी, अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पे ले रहे हैं। और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं सुबह के 9:30 हुए हैं। कार्यक्रम बिचारा आपके गीत हमारे में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं हमारे आज के प्रोग्राम की थीम है बजट और इसको लेकर बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने हमें मैसेज लिख भेजे हैं। कार्यक्रम का ये मैसेज हमारे श्रोताओं का लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

कार्यक्रमी मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं संजय कुमार आर्य सेवानिवृत्त ओल्ड डालन वाला देहरादून से। आप लिखते हैं कि बचत केवल पैसे बचाने का नाम नहीं बल्कि सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। हर छोटी बचत बड़े सपनों को साकार देने की शक्ति रखती है। आज की समझदारी से की गई बचत कल की कठिनाइयों में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती है। इसलिए आय चाहे कम हो या अधिक, नियमित बचत की आदत हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। बूंद बूंद से सागर भरता है और रुपये रुपये जोड़कर भविष्य संवरता है। सभी को बचत दिवस की शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है निश्चित ही, और हमारे दूसरे श्रोता भी इस बात को सुनेंगे और इस चीज को अपनाएंगे कि बूंद बूंद से सागर भरता है, रुपया रुपया जोड़कर भविष्य संवरता है, और ये भविष्य को संवारने में बनाने में बहुत ही मददगार साबित होती है बचत की आदत। धन्यवाद एक बार फिर से संजय कुमार आर्य जी। कार्यक्रम में मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, आप हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। लिखते हैं कि जैसा कि आज का विषय है बचत, पर तो एक बेहतरीन विषय है, पर आज हम चर्चा कर रहे हैं हम सब के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बचत। अगर किसी भी चीज़ की करें तो वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। अब अगर हम बचत पैसों की करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे, हमारे भविष्य में मुश्किल समय में कठिनाइयों में वृद्धावस्था में बहुत ही काम आता है। बचत हम पानी की करें तो बिजली की करें, हम जितना भी करेंगे हम बचाएंगे वो हम सब के लिए भविष्य में काम आएगा। पानी को व्यर्थ खर्च न करें क्योंकि जल है तो कल है। बिजली की बचत भी अगर हम करेंगे तो हमारे आने वाले दिनों में बिजली का बिल का संकट हमें नहीं झेलना पड़ेगा। और साथ ही लिखते हैं बचत हम हर तरह की कर सकते हैं, रिश्तों को भी हम बचाए रख सकते हैं, परिवार में, समाज में, रिश्तों में प्रेम प्यार, अपनी स्नेहपूर्ण व्यवहार से रिश्तों को भी बचा सकते हैं। बचत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भविष्य के लिए, क्या बात है। धर्मेंद्र छिपा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर से विचार के लिए। हमारे जो श्रोता आकाशवाणी से देर से जुड़े हैं और हमारे साथ प्रोग्राम से बाद में जुड़े हैं तो उन श्रोताओं को हम बता दें, श्रोताओं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे में आज की थीम है बचत। लिख भेजिए अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर।

0: रोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम बेचारा आपके गीत हमारे, और ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं आप ही। गेलंदू काठू गोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज, भानुराज, अमित खन्ना और अम्मी, आप सभी लिखते हैं कि एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड इट एवरी डे, डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस, यूज LED बल्ब्स, यूज सोलर एनर्जी, सेव फ्यूल इन व्हीकल, वॉक और साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, सेविंग एनर्जी, सेव मनी, सेव एनर्जी, सेव फ्यूचर। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा लिखा है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो निश्चित ही आप एनर्जी को बचा सकते हैं और बचत करके निश्चित ही वो आप सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। श्रोताओं कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, आप हैं भैरूलाल बाख्तरिया धाकर उरेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं कि बचत करना हम सबको अपनी आदत में शामिल करना चाहिए, अपने उपयोग की वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता हो वही खरीदें, दूसरों की देखा देखी में वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए तथा भोग विलासिता जैसी वस्तुओं से हमें दूर रहना चाहिए। सफ़र, होटल और रेस्टोरेंट जैसी जगह के उपयोग करते समय भी हम अलग अलग श्रेणी में से कब बजट वाली श्रेणी चुन सकते हैं। बिल्कुल आपने सही लिखा है भैरूलाल बाख्तरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर सी विचार के लिए। कार्यक्रम में मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है निज़ामाबाद तेलंगाना से, एम ए वही द्रमानी, डॉक्टर मोहम्मद जबीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबीर, मोहम्मद मुकर्रम सादबीन की बहुत सारे मित्र लिखते हैं कि आज की थीम आपने अच्छी चुनी है बजट। लिखते हैं कि जब मेहनत कर करके हम कमाते हैं तो हमें रोज़ जो जितना हमें कमाते हैं उसमें से खर्चा करने के अलावा हमें ज़रूर कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए, वो हमारे आने वाले मुश्किल समय में काम आ सकते हैं और भविष्य के समय हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद मोहम्मद वहीदुरमानी जी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी और जुनेद और साथ में आपके मित्रगण। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप हैं मैसेज लिखते हैं राजनगर मधुबनी बिहार से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। लिखते हैं कि आज की थी बचत। बचत करने की सीख मेरी माँ ने मुझे गुल्लक से दी, जिसमें मेरे पैसे डालने की आदत की सीख डाली। फिर जब गुल्लक भर जाती थी तो उस बचत पैसे से अपनी मनपसंद कपड़े, खिलौने और खेल सामग्री खरीदती थी। आज मेरी पोती कोमल भी अपने गुल्लक में अपने पैसों को बचत कर गुल्लक में डाल देती है। अगर परिवार के कोई भी सदस्य उससे पैसे उधार मांगे तो बोलती है मैंने तो गुल्लक में डाल दी। बहुत खूब लिखा आपने। लिखते हैं कि हमें बचत तो पैसे ही नहीं, पानी, बिजली और समय की भी बचत करनी होगी, तभी मेरा देश तरक्की करेगा। और आकाशवाणी परिवार को ढेरों बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं। और लिखते हैं जो आपने लिखा है, निश्चित ही बचत की आदत तो हम सभी में होनी चाहिए और ये छोटी छोटी जो बचत की आदत है अपने बच्चों में बचपन से ही डाल सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ें और मैसेज लें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं प्यारा सा गीत।

0: The all-new Nissan Revive अब CNG में
1: Twin Cylinder Technology के साथ पाइए Third Row में भरपूर स्पेस 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित
0: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं शर्तें लागू
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी मोबाइल नंबर 8477008200
3: कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से ये

वास लेहेगांव रेलवे जिला अमरावती से कल्पना कुराड़ी, वंदना आशीष और दीपक कुराड़ी आप सभी लिखते हैं कि आज का टॉपिक अच्छा है। लिखते हैं कि हर इंसान को चाहिए कि वो रोज अपनी कमाई से कुछ पैसे बचा कर रखे तो मुश्किल समय में वही पैसा हमारे काम आ सकता है। यही हमारी आदत हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। रेडियो हमेशा हम हर विषय पर जानकारी देता है, आगे भी देता रहे इसमें कोई शक नहीं। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। धन्यवाद श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और लाभ उठाते हैं। ये अगला मैसेज जय श्रोता लिखते हैं, देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला से सुनील चावला, मीना साक्षी चावला, चोपड़ा दिनेश चोपड़ा, नानू राधुका रानी और साथ में इनके परिवारजन लिखते हैं कि हर रविवार को हम सुनते हैं कार्यक्रम बेचारा, आपके गीत हमारे अच्छा लगता है, आप जो सब्जेक्ट लिया है वो अच्छा है। और लिखते हैं कि हमें बिना वजह की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बचत ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद श्रोताओं। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश, दिल संगीता रानी, हंसमुख लाल और साथ में इनके परिवारजन लिखते हैं, आज की प्रोग्राम की थीम रखी आपने बचत। और इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि जब भी हमें घर का सामान लेना चाहिए तो बजट बनाकर ही लेना चाहिए, जितने पैसे हो उससे ही गुजारा करना चाहिए। लोगों से उधार लिया हुआ पैसा काम नहीं आता है, इसका सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। लिखते हैं कि आजकल गर्मियों के दिनों में हमें पक्षियों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए पानी और उनके लिए रोटी ज़रूर रखनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद श्रोता, आपने अच्छा मैसेज लिख भेजा है। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं मैसेज लिखते हैं, मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भाई रफू साहिब सईद भाई मंसूरी असद भाई फिरोजा मुस्कान और साथ में नगमा नाज मंसूरी लिखते हैं कि दोस्तों हमें बचत करने की आदत ज़रूर अपने आदत में शुमार करनी चाहिए। ये ऐसी आदत है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पैसे खर्च करें तो फालतू ना करें, बिना वजह की चीज़ें ना खरीदें और साथ में ये आने वाली जो बचत भविष्य में हमारे काम आती है और इसलिए हमें बचत की आदत हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद श्रोताओं। कार्यक्रम में मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं लक्सर रोड गांव सुआ एडी कस्बापुर काजी ज़िला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जावीर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सोहेब कहकर शाह साथ में इनका पूरा परिवार। लिखते हैं कि हमारे जीवन में पानी और बिजली बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, पानी उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमें चाहिए, इसलिए हमें बिना वजह पंखे कूलर लाइट पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बातें हमें खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, काम ध्यान रखें कि आज की बचत हमारे आने वाले कल काम जरूर आएगी। धन्यवाद श्रोता आपके सुंदर विचार के लिए। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में चलते चलते हमारे श्रोताओं ये मैसेज हमें लिख भेजा है, शामिल करते हैं। काठगोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से आप हैं पार्वती पूरन, बाला प्रसाद, सूरज पाली, भानु और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी लिखते हैं कि धन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, इसलिए हमें बचत ज़रूर करनी चाहिए, इस आदत को अपनाना चाहिए। हमें कठिन परिश्रम करके ज़रूर बचत करने की आदत डालनी चाहिए जो हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाती है। धन्यवाद श्रोताओं। जी हाँ श्रोताओं, बचत की आदत हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे सपनों को साकार करने में भी मदद करती है, इसलिए बचत करने की आदत के लाभ ही लाभ हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। इसलिए इस आदत को आज ही अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 10 बजे ही आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: यही आकाशवाणी देहरादून में अब आप योशिता पांडे से समाचार सुर्खियां सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में आज पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। आकाशवाणी सभी अभिभावकों से अपील करता है कि वे अपने 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं ताकि उन्हें पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर संचालन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार इस चरण के दौरान प्रतिदिन औसतन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित की गईं। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पाबो क्षेत्र के ग्राम मतोली में पटोटी से मतोली मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। मार्ग के डामरीकरण से क्षेत्रवासियों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में अंगदान और प्रत्यारोपण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकारी और निजी अस्पतालों, प्रशासन तथा संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसी क्रम में सरकार आगामी 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को समाप्त करेगी। समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने ये जानकारी दी। देहरादून की जीवनदायिनी रिस्पना नदी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए जिला प्रशासन ने मिशन मोड में कार्य शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका, समाज सेविका, राजनीति व्याख्याता और शिक्षाविद हेलन केलर की 147वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। बागेश्वर के केंद्रीय विद्यालय के छात्र कार्तिकीय रावल ने 55वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 की बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार इस अवधि के दौरान पर्वतीय जिलों में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। वहीं कल से मैदानी जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा तथा झोंकेदार हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे समाचार सुर्खियां।
0: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hello, dear friends. Welcome to Namhe program with me, your RJ Chetan. Today, I am talking about workplace conflict management. कार्यस्थल में संघर्ष के नकारात्मक पहलुओं को सीमित करने और संघर्ष के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है। संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य संगठनात्मक सेटिंग में प्रभावशीलता या प्रदर्शन सहित सीखने और समूह परिणामों को बढ़ाना है। उचित रूप से प्रबंधित संघर्ष समूह परिणामों को बेहतर बना सकता है। अधिकांश पदों पर मजबूत संघर्ष प्रबंधन कौशल एक फायदा है, क्योंकि संघर्ष समाधान से बचना लगभग असंभव है। असहमत होना और असहमत होने पर असहमत होना वास्तव में स्वस्थ है। पूरी तरह से संघर्ष को समाप्त करने से अपनी खुद की समस्या पैदा होंगी। हमारे पास विभिन्न प्रकार की राय नहीं होगी और त्रुटिपूर्ण योजनाएं और नीतियों को पकड़ने और सुधारने का कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन मिसकम्युनिकेशन या पारस्परिक तनाव आसानी से आक्रोश या इससे भी बदतर हो सकता है। संघर्ष के हल करने और बढ़ाने की अनुमति देने वाले संकल्प अंततः उत्पादकता और नुकसान को कम करेंगे और कर्मचारियों के मनोबल को नुकसान पहुंचाएंगे। यही कारण है कि नियोक्ता संघर्ष के प्रबंधन और प्रसार के लिए कर्मचारियों की तलाश करता है। संघर्ष भी संस्था की एक स्वाभाविक समस्या है, क्योंकि जहां बहुत से विचारशील लोग काम करते हैं, वहां मूल्य भावनाएं, आशाएं और उनके स्वयं के हितों के टकराव की संभावना होती है। फिर भी एक सुचारू प्रणाली के लिए आवश्यक है कि इस तरह के संघर्ष को कम करने, नकारात्मक प्रभाव से बचाने के उपाय करने और कुछ नियोजित नीति अपनाने के लिए प्रयास किए जाए। संघर्ष एक मतभेद है। उदाहरण के लिए, अक्सर श्रमिक उच्च मजबूरी की मांग करते हैं और प्रबंधन उनकी मांगों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। फिर श्रमिक और मालिक के बीच संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हड़ताल हो सकती है। या स्वाभाविक है कि तनाव और टकराव की ये स्थिति बिना किसी देरी के इस समाप्त करने के प्रयास के प्रति अशांतित है, ताकि व्यवसाय बढ़ता रहे। एक अन्य विचारक के अनुसार, संघर्ष दो पक्षों के बीच विवाद, असहमति या संघर्ष है। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पक्ष के बीच एक जानबूझकर हस्तक्षेप है। इस प्रकार संघर्ष समन्वय के लिए एक बाधा है, एक विनाशकारी अप्रियता है। जैसे कि हमने स्थापित किया है कि पेशेवर का उद्देश्य संघर्ष से बचने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से हल करना चाहिए। संघर्ष के कई कारण हैं या किसी भी परिस्थितियों में हो सकती है। ये अक्सर आकस्मिक या अचानक होते हैं। ये व्यक्ति, विभाग या समाज के स्तर पर भी संभव है। इसीलिए विवाद या मतभेद स्वाभाविक है जहां कई लोग कार्यरत है। बिना किसी देरी के इस तरह के संकट को संभालना और संघर्ष के दूरगामी प्रभाव से संस्था को मुक्त रखना प्रबंधन की चुनौती है। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। संघर्ष के कारण कुछ ऐसे हैं: विशेषज्ञता द्वारा विशेषज्ञों का बढ़ता महत्व, आपसी सहयोग का अभाव, दूसरे के उत्पादन को कम करने के लिए एक वर्ग की अक्षमता, उपकरण की निर्धारित उद्देश्य और उपलब्धि के बीच अंतर, अधिकारों का अनुचित प्रदर्शन, उच्च अधिकारियों की योग्यता का विनाश, सही नेतृत्व गुणों की कमी, व्यक्तिगत कड़वाहट, रिश्तों का टूटना, कमजोर संचार प्रणाली, मूल्य और मूल्य का भिन्नता, संगठन में उपेक्षा, सुविधाओं की अनुपस्थिति, प्रबंधन का अमित्र व्यवहार, संस्था की एक श्रमिक विरोधी नीति।

सहानुभूतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक संवाद करने की अनुकूल परिणाम पैदा होते हैं और पेशेवर रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। स्पष्ट, सटीक, लिखित और मौखिक संचार के साथ कई अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सकता है। दूसरों के बारे में नाराजगी जताते हुए कि वे पहले से ही जानते हैं, सोचते हैं या इरादा करते हैं, गुस्सा या बुरा हो सकता है। बहुत से लोग शुद्ध रूप से बहस करते हैं क्योंकि वे सुनना चाहते हैं, बस एक अच्छा श्रोता होना आत्मविश्वास को प्रेरित करने और अहद भावनाओं को हल करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। अच्छे संचार कौशल को उदाहरण में शामिल है समस्याओं का त्वरित निराकरण, औपचारिकता पूरी करना, सक्रिय होकर सुनना, नेतृत्व, मध्यस्थता, पार्टियों के साथ बैठक, सही संचार, मोल भाव, अनकहा संचार, संवाद खोले, सकारात्मक व्यवहार सीखना, लिखित संचार, भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी की अपनी भावनाओं और दूसरों के भावनाओं को समझना और उन भावनाओं को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग दूसरों की जरूरतों की पहचान करने और उनसे मिलने, उनकी जरूरतों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेने में अच्छे होते हैं। ऐसा करने के कुछ तरीके ऐसे हैं मेरे दोस्तों। दोस्ताना होना, विश्लेषणात्मक होना, भावनाओं को व्यक्त करना, समझौता, जिज्ञासा दिखा रहा है, माफ कर देना, दूसरों की सहायता करना, ट्रिगर का पता लगाना, सुधारों को पहचानना, जमीनी नियम निर्धारित करें, सम्मान दिखा रहे, व्यवहार को संशोधित करें, आशावादी बने, स्वयं जागरूक होने, आत्मनियमन प्रदर्शित करें। दिस इज ऑल अबाउट वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभिया प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रही थी। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

ये थे सोहम चक्रवर्ती, फिल्म का नाम था लाइफ इन ए मेट्रो। गीता सईद कादरी का और संगीत प्रीतम का था। आइए अब आपको सुनवा देते हैं तनिष्क बागची का संगीत पद किया। कार्यक्रम का ये अगला गीत तुलसी कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बादशाह।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

आइए आपको सुनवाते हैं मीत ब्रदर्स के संगीत निर्देशन में संजीव चतुर्वेदी का लिखा गीत, आवाज़ें हरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की, फिल्म का नाम बागी।

ये स्वर थे जुबिन नौटियाल, अजीज कौर और साथियों के। फिल्म का नाम था शेरशाह। गीत और संगीत निश्क बागची का था। श्रोतम, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं। डीजे सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर संचालन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार इस चरण के दौरान प्रतिदिन औसतन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित की गईं। मंत्रालय ने बताया कि 12,000 से अधिक शटल उड़ानों के माध्यम से 67,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। वहीं 2,000 से अधिक चार्टर उड़ानों के जरिए 11,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई गई। मंत्रालय के अनुसार पहले चरण में हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से कुल 78,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारधाम यात्रा का लाभ उठाया। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका, समाजसेविका, राजनीतिक व्याख्याता और शिक्षाविद हेलन केलर की 147वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। राजकीय संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में अल्मोड़ा और बागेश्वर के दृष्टिबाधित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने हेलन केलर के प्रेरणादायी जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की अल्मोड़ा उपशाखा के संयोजक डॉक्टर VS राणा ने कहा कि हेलन केलर के जीवन से प्रेरणा लेकर दृष्टिबाधित और अन्य दिव्यांगजनों की सहायता करनी चाहिए ताकि उन्हें समाज में अकेलेपन का अनुभव ना हो।
1: लगभग 28 पुस्तकें लिखी। रेडक्लिफ कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, आगे जाकर राजनेता के रूप में भी उतरी और ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं न कभी पहले हुई हैं, न भूतो न भविष्य थी, लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत होती हैं। हम उनके आदर्शों पर चलकर कुछ कर सकें, इसके लिए हम इस आयोजन को यहाँ पर करते हैं कि लोगों को दृष्टि दिव्यांगों के प्रति जो सहयोग की भावना उनके भीतर जागृत हो, उनके साथ एक सहयोगी के दोस्त की तरह व्यवहार करें तथा उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए साथ लेकर चलें।
0: समाज सेविका रीता दुर्गापाल ने कहा कि दृष्टिबाधित होने के बावजूद हेलन केलर ने समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया जो आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।
2: केलर एक दृष्टिबाधित होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, तो उनकी हिम्मत और उनकी प्रेरणा लेकर के मैं सोचती हूँ समाज में सभी को, समाज से कुछ लेते हैं तो समाज को कुछ देना भी जरूर चाहिए। तो सभी समाज सेवा अगर करेंगे तो ये हमारा देश भी बेहतर होगा और सभी लोग भी सुखी होंगे।
0: उधम सिंह नगर में क्रिसमन वर्ल्ड स्कूल को अचानक बंद करने की घोषणा के मामले में उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यालय प्रबंधन को सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त समिति गठित कर निजी विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि अभिभावकों और विद्यार्थियों की चिंता को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा और सभी आवश्यक मानकों का पालन करते हुए उसका संचालन सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। बागेश्वर के केंद्रीय विद्यालय के छात्र कार्तिकेय रावल ने 55वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन सहभागी खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 की बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। कार्तिकेय की इस उपलब्धि पर विद्यालय में हर्ष का माहौल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कार्तिकेय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता भरत रावल, कोच अनिल तड़ागी और विद्यालय से मिले मार्गदर्शन और सहयोग को दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:35 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए तीजन भाई और साथियों से पंडवानी लोकगीत, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
4: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह। सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
5: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
6: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
7: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण

0: पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें pis.gov.in पर।
1: आइए सुनते हैं तीजन भाई और साथियों से ये पंडवानी लोकगीत।

0: कुमारी बचन दे के आए हो सातवा दरवाजा ले नाश करके तहस नहस विजय हो तब घर लहू पूंगी।
1: अच्छा
0: आगे मोर रख ला बढ़ा
1: हाँ।
0: के मुंह पान खाए नहीं रचा
1: अच्छा।
0: अपन हो खाना जरूरी आए
1: हाँ।
0: ये सुन के कीर्ति कुमार का थे भैया जान बुझ के काल के मुख में जाना मूर्खता पाना।
1: अच्छा
0: अरे छोड़ ना
1: हाँ।
0: क्षत्रिय धर्मयन
1: अच्छा।
0: क्षेत्र में मर जाने में
1: हाँ।
0: उचित पद पाबो।
1: अच्छा
0: ये कह के अब मनु कीर्ति कुमार ला तेजा तेजा वचन सुनाए तब घर

0: के निर्माण रचे है से दरवाजा बिगड़ तोड़े छोड़ो नहीं, तोर प्राण बचाना है छोड़ दे।
1: हाँ?
0: राजा दुर्योधन कथे बेटा
1: हाँ।
0: तोर उम्र बिल्कुल न दानी है, मान जा मोर कहना आपस चल देना गा। अरे मैं छतरी बालक हूँ।
1: हाँ?
0: अरे तो ते नानक लईका काबर आहत रे भैया, तोर दादा अर्जुन कहाँ है?
1: अच्छा?
0: अरे जब बेटा के पास में ताकत है तो दादा या एक का जरूरी।
1: हाँ?
0: तोर लड़े के हिम्मत भुजा में ताकत है, कर ले लड़ाई।
1: अच्छा?
0: अब मन्नू बात तीखा तीखा सुन के कका।
1: हाँ?
0: राजा दुर्योधन निकाल के बांध लईका बर छोड़े।
1: अच्छा?
0: अरे बेटा अब मन्नू ये कका।
1: हाँ?
0: खाई जाके

0: बेटा के शक लागे।
1: हाँ
0: काका।
1: हाँ
0: और बेटा यखमन नूले मारो मारो कह कर ललकारने लगे चारों तरफ

छह महारथी घेर के लड़ाई करो वो कर खड़ा।

0: दौड़े कका गुरु द्रोणा देख कर खम्हा अरे संहित काट गिरावे है घोड़ा हाथी सारथीला मार डाले कका यहाँ दिन दशा ले देख कर अब मनु रक्त में डूबे हवे यह मनु रथ में जिस समा डूबे रहे लाल लाल नजर आवत रहे
1: अच्छा।
0: काल वसी अब मनु पास कुछ नहीं
1: हाँ?
0: ना तो खड़ंग रहे
1: अच्छा?
0: ना तो बांध रहे
1: हाँ?
0: सब लत काट डरे रहे
1: अच्छा?
0: जी खिसिया इसको
1: हाँ?

0: नाश कर डारे मन्नू।
1: अच्छा
0: सेना मन का क्या रक्त रक्त में डूबे रहे।
1: अच्छा
0: एक तो भूषण काकरो खाली नहीं
1: हाँ?
0: तो इसने अब मन्नू के शरीर चलने का छेदा रहे।
1: अच्छा
0: पर भी बेटा हिम्मत नहीं हारे
1: हाँ?
0: मारे पर जिस समय तैयारी हो
1: कथे
0: ऐसन में याद ऐसा कर दिखाऊं तो रक्त के धारल नदिया तक बहा।
1: अच्छा
0: ऐसे मन्नू कहकर जिस समय चक्र सुदर्शन के सरा पहुँचा जब दौड़ के दौड़े
1: हाँ?
0: तो गुरु द्रोण कथे दुर्योधन
1: हाँ?
0: बेटा के पार

0: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
3: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
4: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
3: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
5: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप इस समय सुन रहे हैं तीजन भाई और साथियों से पंडवानी लोकगीत।

0: सका।
1: हाँ?
0: कीर्ति कुमार वो समय सुन के चंचल चार घोड़ा ले सजा के
1: अच्छा?
0: और पकड़ के बागडोला रथ में बैठे हवे।
1: हाँ?
0: ये मनु ला ललकार की थे तैता देखा थस रे भैया।
1: हाँ?
0: जल्दी रथ में बैठ आज को रोके ना से कराबोगा।
1: हाँ,
0: ये मनु रथ में बैठते सार शंख के धुन करके कका।
1: हाँ?
0: मोरा

0: वाले रथ
1: अच्छा
0: भेरी नंगारा सूल मोदगर खड़ंग तलवार के ढेर लगे
1: अच्छा
0: कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंच गए जहां गुरु द्रोणा निर्माण रचाए रहे चक्रव्यूह के
1: अच्छा
0: पहली दरवाजा में सिंध राज्य द्रुत ल रखे रहे काका रक्षाकारी
1: अच्छा
0: दरवाजा पार मत हो भाई कोनो वीर की
1: हां
0: अरे वही जाकर सब राजा चक्कर खा के देखे दरवाजा नहीं है सबे राजा राजा नजर यावे
1: भाई
0: अब मन्नू कथे दादा
1: हां
0: अरे मैं आगू आगू जाऊंगा
1: अच्छा
0: बाबा मोहराई

0: बोलने के रथ तैयारी कर दे मैं सिंध राज्य के सामने।
1: अच्छा
0: काका ललकार के अब मन्नू कथे ये जदुरत दरवाजा छोड़ दे तोर प्राण बचाना है ता।
1: अच्छा
0: हंस के जदुरत कथे बड़ा यल करहा लेका हंसते है
1: काबर
0: अरे अतेक जड़ राजा।
1: अच्छा
0: ते नानक लेका राजा से का भय मोरले छोटे कहा है तोर अर्जुन।
1: हाँ
0: अरे बेटा के पास में ताकत हवे कहे जदुरत।

जरूरत है आखिर खोल के।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तीजन भाई और साथियों से पंडवानी लोकगीत। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:55 होने को हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
6: कोई बोले राम राम,
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किट बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किट बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन

और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी।
मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती,
और आज

मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे

कैसे जुड़े रहे, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन

0: मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमाननक्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भर भारतस्य च संकल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य संघटनस्य प्रयोगशालाः अथ भारतीयोद्योग सहभागिनः मिलित्वा निर्मितवन्तः। अर्थात् साम्प्रतं समुद्रात् आकाशपर्यन्तम् अस्माकं भारतं समधिकं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति। सखायः जून मासे एकम् अपरम् आयोजनम् अभवत् यस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं भारतस्य प्रयासैः सह संलग्नम् अभवत्। अपि च एषः कार्यक्रमः आसीत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्मिन् वर्षे विश्वस्य 500,000 संख्याकेषु स्थानेषु योगस्य अनेकाः विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। अस्माकं देशे कोटि संख्याकाः जनाः विविधस्थानेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागं कृतवन्तः। अस्मिन् मासे अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन चैम्पियनशिप इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः अपि अत्यधिका चर्चा जाता। अस्यां प्रतिस्पर्धायां भारतेन 14,100 संख्याकानि पदकानि विजितानि। एतेषु 2,100 संख्याकानि स्वर्ण पदकानि अपि सम्मिलितानि। भारतम् अस्याः प्रतियोगितायाः पदक तालिकायां शीर्षस्थाने आसीत्। अहं सर्वेभ्यः विजेतृ क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः यच्छामि। सखायः कस्यापि राष्ट्रस्य आत्मा तस्य नागरिकाः भवन्ति। यदा तस्य देशस्य जनाः कञ्चिदपि संकल्पं गृह्णन्ति तदा कापि शक्तिः तान् जनान् स्वलक्ष्यात् विचालयितुं न शक्नोति। राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः एषा शक्तिः भारतस्य सर्वश्रेष्ठ निधित्वेन अस्ति। अथ अस्याः जनसहभागितायाः वयं वारं वारं अनुभवं कुर्मः। सखायः पश्चिमैशिया महाद्वीपे समुत्पन्नाः युद्धस्थितीः समालक्ष्य अहं देशवासिभ्यः किञ्चित् निवेदनं कृतवानासम्। अहम् उक्तवानासम् यत् यावत् पर्यन्तं सम्भवः भवेत् कस्मैचित् कालाय सुवर्ण क्रयणम् उपेक्षणीयम्। जनान् उक्तवानासम् यत् विदेशे अवकाशं यापयितुं परिहरन्तु। अहं जनान् कार पूलिंग इत्येतदर्थं प्रेरितवान्। कृषकान् आग्रहं कृतवान् यत् रसायनमुक्त कृषिकार्यं कुर्यात्। कृषिक्षेत्राणां रक्षार्थं प्राकृतिकोर्वरकानाम् अत्यधिक प्रयोगः भवेत्। सखायः अहं देशस्य प्रत्येकं नागरिकस्य कृतज्ञः अस्मि यत् ते न केवलं मम निवेदनस्य समर्थनं कृतवन्तः अपि तु प्रत्येकदृष्ट्या सहयोगं कुर्वन्ति। नैके परिवाराः मह्यं सन्देशान् प्रेषित्वा स्वानुभवान् उक्तवन्तः। नैके परिवाराः

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं। हाँ, किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है। रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप हाँ। सब लिख लीजिए। हाडू तिहवु हारु तिहवु
1: हाडू तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खगकुला
1: कडल करेय खगकुला
0: यनी
1: तो मुगीला उद्द अगला जी की दानी तो
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टंजा है, बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा, दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे हसीव मरेसी
0: वांछे मेरेसी
1: वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा,
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो?
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं?
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो
1: आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम होना है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: इसको हम रिक्वेस्ट कर देंगे। हाँ?
1: हाँ।
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं, पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: इलाके से हैं दादरा।
1: तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना?
2: धा दिन ना।
1: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती है।

0: పదని సరి
1: दूसरा अंतर तो पूरी तरह से याद हो गया, तो अब तीसरा अंतर सीखेंगे।
0: यावनाडो यंथकाडो
2: यावनाडो यंथकाडो
0: हारो आते हस्तिगे
2: हारो आते हस्तिगे
0: मुक्त गगन।
3: कन्नड़ भाषा में सामुदायिक गान शिक्षा पाठ अभी प्रस्तुत किया गया। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम बालमंडल।
4: साड़ी कार्टून देखता है, मैं भी साड़ी कार्टून देखता हूँ।
5: बच्चों संडे को बालमंडल

0: जय हिंद बच्चों, लेकर आ गई हूँ मैं आपकी अपनी किरण दीदी, कार्यक्रम बाल मंडल। बच्चों कैसे हैं आप लोग और आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ कैसी गई? आशा करती हूँ कि अच्छी गई होंगी, आपने इंजॉय किया होगा, लेकिन साथ साथ आपने इस गर्मी के मौसम में अपना ध्यान भी रखा होगा और खूब सारा पानी, जूस, फ्रूट्स भी लेते रहे होंगे। और हाँ बच्चों, साथ ही आपका हॉलीडे होमवर्क भी जरूर पूरा हो गया होगा, क्योंकि अब तो आपकी छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं और आपके स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं। तो बच्चों अपने हॉलीडे होमवर्क को अच्छे से चेक कर लीजिए और अगर कुछ बच गया है, कुछ पेंडिंग है, तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिए, जिससे जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपका काम कंप्लीट होगा और आप अपनी कॉपीज अच्छे से सबमिट कर पाएंगे। और अब बच्चों चलिए कुछ बातें करते हैं, कुछ जानकारी हासिल करते हैं जो आपके आने वाले भविष्य में आपकी मदद करेंगी। बच्चों आज है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, जो कि हम प्रतिवर्ष 28 जून यानी कि आज के दिन मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों आम जनता को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसे स्वास्थ्य, मोटर, घर आदि के विभिन्न लाभों के प्रति जागरूक करना और जब जरूरत पड़े उस समय आपकी मदद कर सके, काम आ सके। बच्चों बीमा कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा बच्चों हम इसलिए कराते हैं कि भविष्य में यदि हम ना रहे तो हमारे परिवार को कभी आर्थिक संबंधी परेशानी ना हो, वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे ही बच्चों स्वास्थ्य बीमा हम इसलिए कराते हैं जिससे हम बढ़ते चिकित्सा खर्चों या गंभीर बीमारी के इलाज के समय होने वाले भारी खर्च से हम बच सके। और बच्चों सामान्य बीमा द्वारा हम मोटर वाहन, घर का बीमा, यात्रा बीमा शामिल होता है, जो कि हमारी जो भी भौतिक संपत्ति हो उसकी सुरक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके। बच्चों बीमा हमें व हमारे परिवारजनों को अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थितियों, दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले भारी आर्थिक नुकसान से बचाता है। भविष्य की उच्च शिक्षा, शादी और रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित पूंजी का निर्माण भी करता है। इसी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आज के दिन राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस यानी कि नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं स्वस्थ तन स्वस्थ शरीर की। बच्चों कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि बच्चों भौतिक धन, संसाधन, सफलता तभी अच्छी है जब हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही है, स्वस्थ है। एक स्वस्थ शरीर ही हमें अपने दैनिक जीवन की उपलब्धियों का आनंद लेने और कठिनाइयों को सहजता से दूर कर पाने में सक्षम बनाता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो धन का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, हम उसका कहीं यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से संतुलित आहार जैसे कि ताजे फल, सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मोटे अनाज यानी मिलेट्स को अपने रोजमर्रा के भोजन में शामिल करना चाहिए, जिससे हम पौष्टिक और संतुलित आहार ले सके और हमारा शरीर स्वस्थ हो सके, मजबूत बन सके। ऐसे ही बच्चों रेगुलर शारीरिक और मानसिक गतिविधियों द्वारा भी, जैसे योग, साधना, व्यायाम, पैदल चलना, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, जरूर करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको जरूर निकालना चाहिए। और साथ ही बच्चों गहरी नींद और पर्याप्त नींद भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, जिससे हमारा मन और हमारा मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहे, ऊर्जावान रहे। ऐसे ही बच्चों पानी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखें, जिसके लिए आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, फ्रेश जूस पीना चाहिए। लेकिन बच्चों प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड से दूरी बनाकर रखिए, तभी आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा और अधिक ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि ये सभी जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे ऑर्गन्स को अंदर से हार्म कर रहे हैं जिसके लिए हमें बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं और उससे कहीं ना कहीं किसी चीज से कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो कोशिश करिए ताजे फल ताजी सब्जियां लीजिए और पर्याप्त पानी पीजिए जिससे हम बीमारियों से दूर रहें और स्वस्थ रहें। तो ये थी बच्चों कुछ जानकारियां और अब क्योंकि आज है बाल मंडल और ये प्रोग्राम आपका होता है आपकी प्रस्तुतियों का होता है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे हैं तो हम सभी से एक एक करके बातें करेंगे और जानेंगे कि वो आज आपको क्या सुनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पहले बच्चे से और जानते हैं उसका नाम और वो आज आपको क्या सुनाने वाले हैं। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम दृश्य है। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है किरण और इस कविता के कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। अभी किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक नहीं निकल पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। सुख से सोए होगी पर मुझको नींद नहीं आई, पर एक कथा है पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी कि गनिया सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुना कर एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ। बच्चों जो बिस्तर में सोए होते हैं उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ से आती हूँ। धन्यवाद।
0: चलिए

0: दूसरे बच्चे से बात करते हैं और जानते हैं वो आज आपको क्या सुनाने वाले हैं। हेलो बच्चे, आपका नाम क्या है?
1: नमस्कार दोस्तों, मैं मानविक राज बिश्नोई आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वर्षा बहार। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छोटे अनूठी घंघोर छा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बह रहा है, झरने भी भर रहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाते हैं मलीने अब, तालों में जीव जलचर अति प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्मताप खोते। शुक्रिया दोस्तों।
0: बच्चों, दूसरी बच्ची से बात करते हैं, थोड़ी सिंसियर सी है और आप सब में थोड़ी बड़ी भी है। चलिए उससे बात करते हैं और जानते हैं वो आज आपको क्या सुनाने वाली है। हेलो बच्चे, आपका नाम क्या है?
2: सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति कठायर और मैं क्लास 12th की एक स्टूडेंट हूँ। आशा करती हूँ कि इस बढ़ते हुए तापमान के साथ आपकी हेल्थ और एज वेल एज आपका मूड बहुत अच्छा होगा। तो तापमान से मुझे याद आया कि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ने लगती है तो वो अपने साथ लेके आती है नेगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। पर बारिश की कुछ बूंदें पड़ने से ही माहौल के साथ साथ हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों ही तरोताजा हो जाता है। तो ऐसे ही मैं आपके दिमाग को और दिल को तरोताजा करने के लिए एक पोइट्री आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ए जिंदगी रुक। ए जिंदगी रुक, तेरे साथ जाना है, जरा हंसना है जी भर के, जरा आंसू बहाना है। ए जिंदगी रुक, तेरे साथ जाना है, कि इन बेरुख हवाओं में मुझे उड़ना है जी भर के, कि उफनाती सी लहरों में मुझे गोता लगाना है। ए जिंदगी रुक, तेरे साथ जाना है। हमाना कुछ कहानी भी अधूरी छोड़ दी हमने, हमाना कुछ कहानी भी अधूरी छोड़ दी हमने, मगर उन कुछ कहानी में भी अपना एक फसाना है। ऐ जिंदगी रुक, तेरे साथ जाना है। मिटेगी आग में जलकर, उड़ेगी राख सी बनकर, मिलेगी यार से जाके तू बिछड़ी प्रेमिका बनकर, है इतना ही सफर तेरा, मौत अंतिम ठिकाना है, कि कुछ पल की उदासी है कि फिर तो मुस्कुराना। ऐ जिंदगी रुक, तेरे साथ जाना है। धन्यवाद।
0: और अब बच्चों चलिए बात करते हैं दूसरे बच्चे से। और आपकी इतनी क्यूट सी दो चोटियां किसने बनाई हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो और आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाले हो?
3: नमस्ते, मेरा नाम आशिका पंत है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। क्या आपको पता है दोस्तों 16 जुलाई को कौन सा खास दिन होता है? जी हाँ, हरेला, उत्तराखंड का हरियाली वाला त्योहार, जिसको हम उत्तराखंड में हर वर्ष उत्साह, उमंग और समृद्धि के साथ मनाते हैं। तो आज मैं हरेला के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हरेला उत्तराखंड का एक पवित्र और लोकप्रिय पर्व है। हरेला का अर्थ है हरियाली। ये त्योहार श्रावण माह के पहले दिन मनाया जाता है, जब वर्षा रानी धरती को हरा भरा कर देती है। हरेला से 9-10 दिन पहले घर के मंदिर में मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 तरह के बीज बोए जाते हैं। जौ, गेहूं, मक्का, उड़द, काहट। हरेला के दिन इन्हें काटा जाता है। घर के बड़े इन्हें सबके सर पर रखकर आशीर्वाद देते हैं। जी रहे, जागी रहे, धरती जैसी चाक, आकाश जैसी विशाल। इसका मतलब है तुम जीवित रहो, जागरूक रहो, धरती जैसे धैर्य रखो और आकाश जैसे विशाल बनो। ये पर्व हमें पेड़ पौधों का महत्व बताता है, नई फसल का स्वागत होता है। आज के दिन पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। आज के समय में जब पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हरेला हमें याद दिलाता है कि धरती हमारी माँ है। इस हरेला पर हम सब संकल्प लें, एक पेड़ जरूर लगाएंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे।
0: और अब चलिए दूसरे बच्चे से बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज आपको क्या सुनाने वाली है।
4: सुप्रभात, मेरा नाम सौभाग्यश्री टमटा है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं सुमन हूँ और उनके कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। व्योम के नीचे खुला आकाश मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, झेलता हूँ मार मरुत के निरंतर, खेलता यूं जिंदगी का खेल हंसकर, शूल का दिन रात मेरा साथ, किंतु प्रसन्न मन मैं सुमन हूँ। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, मैं बेहस उनके गले का हार बनता, राह पर बिछना की चढ़ना देवता पर, बात है मेरे लिए दोनों बराबर, मैं लुटाने को हृदय में भरे स्नेहिल सुरभिकन हूँ, मैं सुमन हूँ। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, साथ शव का भी हमेशा ही दिया है, खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, मुस्कुराता हूँ अंधेरे रात में मैं, मानता सौंदर्य जीवन की कला का संतुलन है। मैं सुमन हूँ, धन्यवाद।
0: और एक और बच्ची मेरे सामने बैठी है और बहुत देर से हैंड रेज कर रही है और मुझे कह रही है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो चलिए उससे बात करते हैं, जानते हैं उसका नाम क्या है।
5: I am Vaishnavi from Sandalwood School. I study in class 5th. Today I'm gonna narrate a story in front of you. The title of my story is The Tattered Genius. Ravi's appearance was very simple. His tattered clothes made people underestimate him. They thought he had no potential and he would never succeed. One day at the school in which he studied, the computer suddenly crashed. The teacher tried fixing it, but nobody could fix it. Then Ravi came forward with full confidence. In just 5 minutes, he repaired it perfectly. Everyone was astonished by his brilliance. Later, the students realized their mistake. They apologized to Ravi and also appreciated him. After a couple of years, Ravi became a software engineer. Moral: never judge a book by its cover. Thank you.
0: चलिए अब बात करते हैं एक और प्यारी बच्ची से जिसने बहुत खूबसूरत फ्रॉक पहनी है और क्यूट से बीट्स लगा के वो आज स्टूडियो में आई है। अब चलिए उससे बात करते हैं और जानते हैं उसका नाम।
6: मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम कृतिका है और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है धरती को हम स्वर्ग बनाए। आओ अब सौगंध खाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। स्वच्छ धरा हर मार्ग, स्वच्छ गली गली हर मार्ग, वृक्षों पर उपवन का आनंद सब चूमे, नव जल थल के प्राणी चूमे। महाशक्ति का स्वप्न सजाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। सर्वधर्म संभाव सम्यता, कभी न टूटे तारतम्यता। राजनीति या कूटनीति हो, न्याय मिले बस ना नीति हो। घर समाज जनपद सब गाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। शनरिपु उति रोग संभावे, वही सवेरा जब हम जागे। नान सर्ग से करे छलावा, दुर्य सनों को ना दे बढ़ावा। गुरु त्रिदेव को शीश नवावे, धरती को हम स्वर्ग बनाए। धन्यवाद।
0: और अब चलिए बात करते हैं एक छोटे से बच्चे को जो इन सब में छोटा है और कैप लगा के आया है, साथ में गॉगल्स भी लगाए। अब मैं उसकी बात कर रही हूँ ना तो हंस रहा है, समझ रहा है कि मुझसे ही बात करने वाला। तो चलिए उससे बात करते हैं, जानते हैं आज आपको क्या सुनाने वाला है।
7: नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष जोशी है। मैं कक्षा 2 सैफ्रॉन का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है स्वाद में खट्टा मीठा आम। बात है इसमें कोई खास, कोई देख इसे ललचाए, बिन खाए फिर रह ना पाए। गर्मी के मौसम में आता, फलों का राजा कहलाता। धन्यवाद।
0: चलिए अब दूसरे बच्चे से बात करते हैं और जानते हैं वो आज क्या सुनाने वाली है।
8: मेरा नाम है तनुश्री, मैं UKG 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है समझदार बच्चे। हम अच्छे बच्चे पौधे लगाते, धरती हरी बनाते, रंग बिरंगे फूल लगाते, बगिया को महकाते, बिजली पानी सबको जितना बचे बचाते, कूड़ा कटकट इधर उधर कभी नहीं फहराते, रोज सवेरे जल्दी उठते, समय पर स्कूल जाते, काम हमेशा पूरा रखते, समझदार कहलाते। धन्यवाद।
0: इतनी क्यूट सी है ना, इसने भी बीड्स लगाई हैं और स्कर्ट टॉप पहना है, छोटी सी हील्स भी पहनी है, तो आपने बहुत क्यूटी कविता सुनाई। और अब एक और प्यारी सी बच्ची बैठी है, वो भी आप सब में थोड़ी सी बड़ी है, तो चलिए उससे बात करते हैं और जानते हैं वो आज आपको क्या सुनाने वाली।
9: नमस्कार, मेरा नाम खुशी है और मैं कक्षा 12वीं की एक छात्रा हूँ, जो आपको एक हिंदी कविता सुनाएगी जिसका शीर्षक है सच की आवाज। हर गली में खामोशी क्यों है, ये हर चेहरे पे ये बेबसी क्यों है, जो कहना था वो कहा नहीं, तो फिर ये चुप्पी सही क्यों है। कागज पर सच लिखता है कौन, कागज पर सच लिखता है कौन, डर के आगे टिकता है कौन, जो टूट रहा है अंदर से उसको खुलकर दिखाता है कौन। ये वक्त भी सवाल करेगा, ये वक्त भी सवाल करेगा, हर डर का हिसाब लेगा, जो आज चुप रह जाएगा, जो आज चुप रह जाएगा, कल खुद से ही जवाब लेगा। अब शब्दों को ताकत दो, सच को थोड़ी राहत दो, ये दुनिया बदलनी है अगर, ये दुनिया बदलनी है अगर, तो आवाज को हिम्मत दो। धन्यवाद।
0: तो बच्चों ये थी हमारी आज की बाल प्रस्तुतियाँ। इन सभी प्यारी बच्चों ने बहुत ही अच्छी पोयम सुनाई है, स्टोरी सुनाई है और हर पोयम और स्टोरी से कहीं ना कहीं एक मॉरल भी मिला है कि हमें अपनी मातृभूमि

हरा भरा रखना चाहिए, हमें अपने आप के लिए स्टैंड लेना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हमें खड़ा रहना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, गलत में गलत को बताना चाहिए, सही जगह पे सही का साथ देना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों से हम सभी का, इन प्यारे बच्चों ने मन मोह लिया है, तो अब इन सबके लिए थोड़ा मनोरंजन भी तो बनता है ना। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: छोटे बेटे की पढ़ाई हो या बड़ी बेटी की शादी, हर जरूरत के लिए है
4: SBI गोल्ड लोन।
3: अरे कोई ऐसा वैसा गोल्ड लोन नहीं, SBI गोल्ड लोन।
5: लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो हिडन चार्जेस, हैसल फ्री प्रोसेस, नो प्री पेमेंट पेनल्टी, क्विक डिसबर्समेंट। SBI गोल्ड लोन, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। आज ही अपनी नजदीकी SBI शाखा से संपर्क करें।
6: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
7: कार्यक्रम बाल मंडल में बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब बच्चों, क्योंकि आज राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस है, इसी विषय पर और जानकारी प्राप्त करते हैं और सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है बच्चों में बीमा और बचत के प्रति जागरूकता। और हमारी वार्ताकार हैं पूजा अरोड़ा।
8: नमस्कार बच्चों, मैं पूजा अरोड़ा आप सभी को बीमा और बचत करने के क्या लाभ हैं उसी के बारे में बताऊंगी, जो केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से पौधे को समय पर पानी और खाद मिलती रहे तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार यदि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं तो वे बड़े होकर एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बन जाते हैं। इन्हीं आदतों में सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण आदत है बचत करना और भविष्य के प्रति सजग रहना। बच्चों, अब मैं आपको बचत का महत्व बताऊंगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही सिद्धांत बचत पर भी लागू होता है। बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना चाहिए कि हर जेब खर्च को तुरंत खर्च कर देना समझदारी नहीं है। यदि आपको सप्ताह या हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं तो उनमें से थोड़ा सा हिस्सा बचाना चाहिए। इसके लिए बच्चों आप गुल्लक या पिगी बैंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुल्लक केवल मिट्टी का बर्तन ही नहीं बल्कि यह अनुशासन, धैर्य और भविष्य की योजना का पहला पाठ होता है। बच्चों, जब आप अपनी बचत से कोई पुस्तक, खिलौना या अपनी मनपसंद वस्तु खरीदते हैं तब आपको अपनी मेहनत और धैर्य का मूल्य समझ आता है। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास और आर्थिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। अब बात करते हैं बीमे की। अक्सर बच्चों को लगता है कि बीमा केवल बड़े लोगों के लिए ही होता है, लेकिन वास्तव में बीमा का संबंध पूरे परिवार की सुरक्षा से है। बच्चों, सरल शब्दों में कहें तो बीमा एक सुरक्षा कवच है। जिस प्रकार हम बारिश से बचने के लिए छाता लेकर चलते हैं, उसी प्रकार जीवन में आने वाली अनिश्चित परिस्थितियों से आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए बीमा कराया जाता है। बच्चों, जीवन में दुर्घटना, बीमारी या अन्य अप्रत्याशित घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में यदि परिवार के पास बीमा होता है तो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसलिए बच्चों को यह समझना आवश्यक है कि बीमे को खर्च नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश माना जाता है। बच्चों, मैं कुछ बातें ऐसी आपको बताने जा रही हूँ, इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो कभी भी आपको विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को गुल्लक या पिगी बैंक रखने और उसमें नियमित रूप से पैसा जमा करने की आदत डालें। बच्चों, जो जेब खर्च आपको मिलता है उसका एक हिस्सा खर्च करें और एक हिस्सा अवश्य बचाएं। यदि संभव हो तो थोड़ा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद की सहायता में भी लगाएं। जब घर में माता पिता या बड़ों के द्वारा बचत या भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो तो आप भी उन चर्चाओं को ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप पैसों के प्रबंध को समझ सकें। बच्चों, आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पसंद की कोई पुस्तक या खिलौना खरीदना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले से ही बचत करनी शुरू कर दीजिए। बच्चों, यदि आपको सरल शब्दों शब्दों में बताएं तो ऐसे समझिए कि जिस प्रकार आप अपने स्कूल की किताबों और कॉपियों को कवर चढ़ाकर सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार बीमा भी आपके और हमारे जीवन और भविष्य की सुरक्षा का कवर होता है। बच्चों, बचत केवल व्यक्ति विशेष को ही लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी योगदान देती है। जो समाज बचत करता है वह आर्थिक रूप से मजबूत होता, बचत से निवेश बढ़ता है, उद्योगों का विकास होता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इसी प्रकार बीमा व्यवस्था लोगों को संकट के समय आर्थिक सहायता देती है। यदि किसी परिवार पर अचानक कोई विपत्ति आती है तो उन्हें बीमा संभलने का अवसर देता है। इसीलिए एक जागरूक समाज के लिए बचत और बीमा दोनों का ही अधिक महत्व है। इसी के साथ मैं माता पिता तक भी ये जानकारी पहुंचाना चाहती हूं कि कुछ बीमा योजनाएं हैं जिन्हें आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करा सकते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बाल जीवन योजना, बालिका समृद्धि योजना। बचत की आदत से बच्चों में अनेक सकारात्मक गुणों का विकास होता है, जैसे अनुशासन, धैर्य, आत्मसंयम, जिम्मेदारी और भविष्य की योजना बनाने की क्षमता। वहीं बीमे के बारे में जानकारी आपको यह सिखाती है कि जीवन में दूरदर्शिता और तैयारी कितनी आवश्यक है। वे यह समझ पाते हैं कि व्यक्ति आज के बारे में नहीं सोचता, बल्कि आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। बच्चों में यह जागरूकता विकसित करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अभिभावकों और शिक्षकों की होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि माता पिता स्वयं नियमित बचत करते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं और भविष्य की आर्थिक योजना बनाते हैं तो बच्चे भी इन आदतों को सहज रूप से अपना लेते हैं। बच्चों, मैं आपको बचत का महत्व सरल शब्दों में समझाने के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों को हर महीने समान जेब खर्च मिलता था। पहला मित्र सारा पैसा तुरंत खर्च कर देता था, जबकि दूसरा मित्र हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करता था। कुछ वर्षों बाद पहले मित्र के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरे मित्र ने बचत से अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक किताबें और कंप्यूटर खरीद लिया। तब पहले के मित्र को समझ आया कि छोटी छोटी बचत से भी बड़े बड़े सपनों को पूरा किया जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भविष्य उन्हीं का सुरक्षित होता है जो आज से ही उसकी तैयारी करते हैं। बच्चों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बचत और बीमा आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने एक सकारात्मक और जिम्मेदार सोच है। बच्चों, यदि आप बचपन से ही धन का महत्व, बचत की आदत और बीमे की उपयोगिता को समझ लोगे तो भविष्य में आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनोगे। आज की छोटी बचत कल की बड़ी सुरक्षा बनती है और यही समय पर लिया गया बीमा परिवार के लिए सुरक्षा का आधार बनता है।
7: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे पूजा अरोड़ा द्वारा बच्चों में बीमा और बचत के प्रति जागरूकता। तो ये था बच्चों आज का हमारा बाल मंडल कार्यक्रम। आशा है आप सबको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होंगी। तो बच्चों, अगर आप भी हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं, हमसे अपनी बाल प्रस्तुतियां शेयर करना चाहते हैं, तो आप सभी का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। हम बाल मंडल कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर शनिवार दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच करते हैं और हम इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं हर रविवार दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच कार्यक्रम बाल मंडल में। और अब बच्चों, घड़ी की सुई मुझे इशारा कर रही है कि जाने का समय हो गया है, तो आप अपनी किरण दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद।
9: सारे कार्टून देखता है, मैं भी सारे कार्टून देखता हूँ।
10: बाल मंडल।

0: बालमंडल ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून से। 1 बजने को है, अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया

0: में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। समय प्रादेशिक समाचार का।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कैंची धाम पहुंचे, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विकासखंड पाबो में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। बागेश्वर जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 37,500 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए और केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर के छात्र ने 55वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर पहुंचकर बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन किए एवं पूजा अर्चना की। मेघवाल ने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा के बाद कहा कि उन्होंने भारत की जनता की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए बाबा नीब करौरी महाराज से मन्नत मांगी है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है। इस दौरान श्री मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहां आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा।
4: दर्शन करने का जब मानस बना तो वहां सबने का आदेश हो रहा है और यहां हम आए बहुत अच्छा लगा। बाबा के उपदेश के बारे में बहुत सुना था, यहाँ देश विकसित भारत बने, ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में सबसे तेज गति से उन्नति करे, ऐसी बाबा से प्रार्थना की है और देश में खुशहाली बने रहे, ऐसी भी प्रार्थना है।
3: कैबिनेट मंत्री एवं श्रीनगर विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने विकासखंड पाबौक क्षेत्र में 4,85,00,000 रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं क्षेत्र के ग्राम सलाना में कैबिनेट मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय त्रिलोक सिंह भंडारी की स्मृति में निर्मित स्मृति द्वार का लोकार्पण करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग और समर्पण राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है और उनके आदर्श सदैव नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण को देहरादून स्थित गढ़ी कैंट डाकरा में पार्टी कार्यकर्ताओं संग सुना। इस दौरान श्री जोशी ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों को जोड़ने वाला एक सशक्त संवाद का माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनभागीदारी की भावना को सशक्त बनाने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को भी रेखांकित करता है। उन्होंने सभी नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में मन की बात कार्यक्रम को सुने तथा प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पौड़ी जिले के कोटद्वार में कोटद्वार किशनपुरी चिल्लरखाल मार्ग पर तेली स्रोत नदी पर 2,37,00,000 रुपए से निर्मित स्पैन डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह पुल क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता थी और पुल के बनने से क्षेत्र के हजारों लोगों को वर्षभर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। यह पुल केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास, बेहतर संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाला महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक गुणवत्तापूर्ण सड़क, पुल और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है।
5: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
3: बागेश्वर जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना जरूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जिला अस्पताल बागेश्वर में वर्तमान तक 37,500 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं जिससे बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत कुल 6,000 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. तपन शर्मा ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में लगभग 70% मरीजों का उपचार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।
6: जिला अस्पताल बागेश्वर में आयुष्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही सारे लोगों का इलाज हो रहा है। मैं जहां तक समझता हूं लगभग 70% जो भर्ती हैं मरीज वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत ही होते हैं। वर्तमान में जो हमारा जो फिगर है जिला अस्पताल बागेश्वर की, वो सन 2021-22 में 2942 मरीजों का इलाज हुआ था, 2023-24 में 1361 मरीजों का इलाज हुआ था। इस प्रकार से कुल अभी तक 6,060 रोगियों का इलाज हो चुका है। और इसके साथ साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत चाहे वो अस्थि रोग का हो, ऑर्थोपेडिक का हो, जनरल सर्जरी का हो या अन्य माइनर सर्जरी हो, उनका भी इलाज या ऑपरेशन उनके आयुष्मान योजना के अंतर्गत हो रहे हैं। इसके साथ साथ मरीज भर्ती भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य जो उनकी जांचें हैं जैसे कि सीटी हो गया या अन्य कोई बड़ी जांच,

0: वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत की जा रही है।
1: वहीं योजना से लाभान्वित चिड़ग निवासी गोविंद चौहान ने बताया कि उन्होंने अपनी माताजी का उपचार आयुष्मान योजना के तहत कराया। उनका कहना है कि अस्पताल में बेहतर इलाज मिला और यह योजना आम लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है।
2: पिछले साल एक साल पूर्व अगस्त में मैं अपनी माताजी को यहाँ जिला अस्पताल में यहाँ मैंने एडमिट करवाया, जिनका कि बोन में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें यहाँ एडमिट किया गया था, जिससे कि आयुष्मान कार्ड होने के कारण मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। और उसके बाद जब इनका इलाज होने के बाद मैं घर ले गया, घर ले जाने के बाद जब पिछली बार इस बार अप्रैल के महीने में इन्हों फिर से तकलीफ़ हुई, तो फिर से मैंने आयुष्मान कार्ड का उपयोग करते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेवाएं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुझे प्राप्त हुई हैं।
1: हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वर्षा ऋतु के दौरान गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिले में संचालित रेत, बजरी एवं बोल्डर चुगान और मिट्टी खुदाई पर 30 जून से सूर्यास्त के बाद से अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। इसके तहत जिले में आरबीएम चुगान एवं मिट्टी खुदाई के लिए जारी सभी अनुज्ञा पत्र एवं अनुमतियां 30 जून के सूर्यास्त के बाद से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी। उन्होंने सभी पट्टा धारकों एवं अनुज्ञा धारकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय के बाद आरबीएम चुगान एवं मिट्टी खुदाई का कार्य तत्काल बंद करें। केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर के कक्षा 7 के छात्र कार्तिकेय रावल ने 55वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 की बैडमिंटन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। कार्तिकेय की इस उपलब्धि पर विद्यालय में हर्ष का माहौल है। विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हम उनके लिए करते हैं। कार्तिकेय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता भरत रावल, कोच अनिल तड़ागी तथा विद्यालय से मिले मार्गदर्शन, सहयोग और निरंतर प्रोत्साहन को दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कैंची धाम पहुंचे। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विकासखंड पाबो में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। बागेश्वर जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 37,500 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए और केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर के छात्र ने 55वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी देहरादून। दोपहर के 1:15 का समय। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

अभिजीत भट्टाचार्य को अभी आप सुन रहे थे कृष्णा फिल्म से, संगीत अनु मलिक का था। कार्यक्रम का अगला गीत रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, समीर का लिखा हरीश जयराज की धुन, फिल्म का नाम रहना है तेरे दिल में।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 14.5 MHz पर। और कार्यक्रम में अगला गीत किशोर कुमार के स्वर में, आनंद बख्शी का गीत है, SD बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम आराधना।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत बॉबी फिल्म से, आनंद बख्शी का लिखा गीत। गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के युगल स्वर।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये सफर यहीं पूरा होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से। अपराह्न के 2 बजे को है। अब आप सुनेंगे अंग्रेजी और उसके पश्चात हिंदी में समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: मिस्टर मोदी एक्सूडेड प्राइड दैट इंडिया हैज अचीव्ड सक्सेस लिंक्ड टू द कंट्रीज सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस दिस मंथ। ही अटेंडेड एन इवेंट इन कोलकाता रिसेंटली वेयर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक एंड आईएनएस अग्रे वर इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवीज फ्लीट। मिस्टर मोदी नोटेड दैट इंडिया इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली सिक्योर एंड सेल्फ रिलायंट फ्रॉम द सीज टू द स्काइज।
2: कोलकाता में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक

0: आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: The Prime Minister also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nanded, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargila bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: The Prime Minister mentioned Meghalaya's root bridges, saying these root bridges take decades to take shape. He shared that India has now applied to have Meghalaya's root bridges included in the UNESCO World Heritage Site Network. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honour at the State House, with President Hermione also present. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the central role of villages in realizing the vision of Viksit Bharat 2047. Addressing the Rashtriya Grameen Vikas Sammelan in New Delhi, Mr. Chauhan said a provision of over 1,51,000 crore rupees, including the state's contribution, has been made under the Viksit Bharat Grameen scheme to accelerate rural development while ensuring livelihood security for rural workers.
2: Village is not merely a part of India's geography. It is the soul of India. It is India's economy, its identity. A village is not just a settlement. It embodies India's civilization, culture, values of life, traditions, and has long been a center of prosperity. Our strength lies in our villages, and so does our future potential. Villages are also the strongest unit of our democracy. Today's conference is a meaningful churning of ideas aimed at achieving rural prosperity.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Midday News. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. The United States said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. US President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. Iran responded within hours with missile and drone attacks targeting American military facilities in Kuwait and Bahrain. More from our correspondent.
3: The latest exchange marks the most serious collapse of the interim ceasefire agreed earlier this month between Washington and Tehran. The United States Central Command says it carried out strikes on multiple targets inside Iran in response to continued attacks on commercial shipping. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it retaliated by launching missiles and drones targeting U.S. military infrastructure in Kuwait and Bahrain. Following the exchange, both Washington and Tehran accused each other of violating the ceasefire. In a statement, United States Central Command said Iran had been given an opportunity to uphold the ceasefire, but instead launched a one-way attack drone that struck Panama-flagged oil tanker MT Kiku. Iran's foreign ministry, meanwhile, said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as the treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defence production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
0: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
4: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज

0: 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म

0: मल डोमिनिकाना टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे T20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। सैनिकों के लिए कार्यक्रम के आज के अंक में मैं पुष्पा पुंडीर करती हूं आपका स्वागत अभिनंदन। सैनिक साथियों, आज हम याद कर रहे हैं उस युवा वीर को जिन्होंने महज 22 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जी हां, आप हैं शहीद कैप्टन विजयंत थापर।

26 दिसंबर साल 1976 को एक सैन्य परिवार में जन्मे विजयन थापर के पिता कर्नल वीएन थापर भी सेना में ही थे। बचपन से ही वर्दी, अनुशासन और देशभक्ति उनके संस्कारों का हिस्सा बन गए थे। कहा जाता है कि कैप्टन विजयन थापर बचपन में पिता की टोपी पहनकर एक फौजी अफसर की तरह मार्च किया करते थे।

भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण लेकर वो सेना में शामिल हुए और आगे चलकर दो राजपूताना राइफल्स के साथ कारगिल युद्ध के मोर्चे पर पहुंचे। जून साल 1999 में तोलोलिंग और नौल की लड़ाइयों में उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। दुश्मन ऊंचाई पर था, रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन कैप्टन विजयंत अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे।

28 जून की रात नौल पर कब्जे की लड़ाई में दुश्मन की मशीन गनों को शांत करने के लिए वो खुद आगे बढ़े। इसी दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनके साहस से प्रेरित होकर भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़कर नौल पर विजय प्राप्त की।

शहीद कैप्टन विजयन थापर को उनके अदम्य साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विजयन थापर की वीर गाथा इतनी प्रेरक रही कि कारगिल युद्ध पर बनी फिल्म LOC कारगिल में भी उनके साहस और बलिदान को स्थान दिया गया।

सैनिक साथियों, सच है, वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। शहीद कैप्टन विजयंत थापर को आकाशवाणी देहरादून की ओर से शत शत नमन। आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सैनिक साथियों, जय हिंद।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM 100.5 MHz पर। यह है आकाशवाणी देहरादून। 3 बज रहे हैं। अब पेश है गाने नए तराने।

बेनी दयाल श्रेया घोषाल की ये आवाज़ें थी। प्रसून जोशी ने बोल लिखे थे और गीत को संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। फिल्म का नाम था गजनी। मोहित चौहान, प्रिया सरैया, अर्पिता चक्रवर्ती, तनिष्का सांघवी को अब आप सुनेंगे हीरो फिल्म से। सचिन जिगर के शब्द हैं और संगीत निरंजन का।

श्रेया घोषाल और अजय की आवाजों में अगला नगमा स्वानंद किरकिरे ने गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है अजय अतुल ने। फिल्म का नाम सिंघम।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: गाने नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। रेखा भारद्वाज, शबाब सबरी, तोशी शरीफ और शरीफ सबरी की आवाज़ों में फिल्म वीर।

मैं हूं ना। इस फिल्म से अगला गीत अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की युगल स्वर में जावेद अख्तर के शब्दों को सुरों में पिरोया है अनु मलिक ने।

रीना भारद्वाज की यह आवाज़ थी मीनाक्षी फिल्म से। राहत इंदौरी का गुलाम था ए आर रहमान की मौसिकी। अगला गीत गुलजार का लिखा, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने। सिद्धार्थ महादेवन, साइन जहूर और लॉय मेंडोसा की आवाज़ें। फिल्म मिर्ज़ा।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म से अगला गीत मोहित चौहान के स्वर में, इरशाद कामिल ने गीत को लिखा है, धुन तैयार की है प्रीतम ने।

पीकी फिल्म से शान और श्रेया घोषाल की आवाजें थी। शब्द रचना स्वानंद किरकिरे की, संगीतकार थे शांतनु मोइत्रो। हर्षदीप कौर को अब सुनिए रईस फिल्म से, संगीत राम संपत का है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं, अब सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप अखिलेश चंद्र गैरोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से ही विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पौड़ी जिले के कोटद्वार में तेली स्रोत नदी पर निर्मित स्पैन डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियोरोधी दवा की खुराक पिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना, कहा मन की बात देशवासियों को प्रेरित करने वाला कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2026 के लिए जूनियर व सब जूनियर वर्ग की राज्य टीम का चयन 20 से 25 जुलाई तक हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तरणताल में होगा। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विकासखंड पाबो में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। बागेश्वर जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 37,500 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। देहरादून के जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को रिस्पना नदी के पुनर्जीवन अभियान के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर के छात्र ने 55वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा 4 जुलाई से होगी शुरू। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। 4:02 हुए हैं और ये समय है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रूही पोपली का ख्याल गायन। राग है मुल्तानी।

राग मुल्तानी में रूही पोपली का ख्याल गायन अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी देहरादून है। स्टूडियो की घड़ी समय बता रही है 4:30। अब पेश है कार्यक्रम एक कलाकार।

कार्यक्रम एक कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पा पुंडीर का प्यार भरा नमस्कार। आज के हमारे कलाकार हैं निर्माता निर्देशक आनंद एल राय। जी हाँ श्रोताओं, मुंबई की फिल्मी दुनिया में आनंद एल राय का नाम उन फिल्मकारों में लिया जाता है जिन्होंने बड़े पर्दे पर छोटे शहरों की धड़कन, भाषा, रिश्तों और भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से जगह दी।

28 जून साल 1971 को नई दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में की और आगे चलकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले वो आईटी सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, लेकिन रचनात्मकता की खींच उन्हें कैमरे और कहानियों की दुनिया तक ले आई।

आनंद एल राय के बड़े भाई टीवी इंडस्ट्री से जुड़े थे और यहीं से उन्होंने निर्देशन की बारीकियां सीखनी शुरू की। साल 2007 में उन्होंने फिल्म स्ट्रेंजर्स से निर्देशन की शुरुआत की, लेकिन शुरुआती फिल्मों को खास सफलता नहीं मिली।

इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि ये समझा कि दर्शकों से जुड़ने के लिए कहानी में मिट्टी की खुशबू, अपनेपन की भाषा और सच्चे किरदार जरूरी हैं। यही समझ उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। साल 2011 में आई तनुवेर्स मनु ने उन्हें नई पहचान दी। छोटे शहर की पृष्ठभूमि, देसी अंदाज, चुटीले संवाद और भावनात्मक रिश्तों ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

टनोवेट्स मनु के बाद रांझणा में उन्होंने प्रेम, जुनून और दर्द को एक अलग गहराई के साथ पेश किया और इसी फिल्म से धनुष ने हिंदी सिनेमा में प्रभावशाली शुरुआत की।

साल 2015 में तनु वेड्स मनोरिटन्स ने आनंद एल राय को बॉलीवुड के सफल निर्देशकों की कतार में मजबूती से खड़ा कर दिया। आगे चलकर उन्होंने नीलबट्टे सन्नाटा, शुभ मंगल सावधान और हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों को भी दर्शकों तक पहुंचाया।

आनंद एल राय की फिल्मों की खासियत यही है कि उनके किरदार बनावटी नहीं लगते, वे आसपास के ही लगते हैं। कभी बनारस की गलियों से, कभी कानपुर लखनऊ की बोली से, तो कभी किसी छोटे शहर के अधूरे प्यार से निकलकर ये कहानियाँ सीधे दिल में उतर जाती हैं।

संघर्षों से सीखकर अपनी कहानी कहने का अलग अंदाज बनाना, यही आनंद एल राय की पहचान है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर आकाशवाणी देहरादून की ओर से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। हमारे आज के कलाकार थे निर्माता निर्देशक आनंद एल राय। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी देहरादून है। शाम के 5 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतरराष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्बाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज जलडब्रू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच दो

0: टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में शाम 5:10 पर युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे, जिसमें आज आप सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत रहेगा, जिसमें आज आप सुनेंगे श्रोताओं का अनुरोध माँ। किसान साथियों का कार्यक्रम कृषि जगत में आज आप सुनेंगे बागवानी से आमदनी विषय पर डॉक्टर रेणु से विकास चमोली की बातचीत। समय रहेगा शाम 7:00। रात्रि 8:00 डॉक्टर पुष्पा रानी वर्मा का कविता पाठ आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यांजलि के अंतर्गत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनिएगा राजेंद्र और नीना मेहता की गाई चंद गजलें रात्रि 8:15 पर। रात्रि 10:00 दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रविवासीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट आप सुन सकेंगे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी कि सोमवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। शैल संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे उप्रेती सिस्टर्स के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत सुबह 7:30 पर। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10:35 पर आप सुनिएगा रजनी टॉक के गाय रुहेलखंडी लोकगीत। सेहत कार्यक्रम में कल आप सुनिएगा सुबह 9:45 पर, जिसमें आप सुनेंगे आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या और ऋतुचर्या पर डॉक्टर शालिनी कोठियाल से बातचीत। कार्यक्रम घर गृहस्थी के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे आधुनिक कृषि और एआई विषय पर डॉक्टर किरण पंत की भेंट वार्ता।

रात्रि 8 बजे कल आप सुनेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उभरती हिंदी पत्रकारिता विषय पर श्री रजनीश कुमार त्रिवेदी की वार्ता। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और कल यानी कि सोमवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां मैं सक्षम पंत
1: और मैं नंदिता भट्ट आप सभी के बीच दोबारा हाजिर हो चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ।
0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल स्टेडियम, हजारों दर्शकों की गड़गड़ाती तालियां, दुनिया के 200 से अधिक देशों के खिलाड़ी, और जब भारत का तिरंगा ऊंचा लहराता है और राष्ट्रगान गूंजता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
1: जी हाँ, और यही है ओलंपिक का जादू। ओलंपिक सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ है, जहाँ प्रतिभा, अनुशासन, मेहनत और खेल भावना का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है।
0: दोस्तों भारत की जो ओलंपिक यात्रा है वो काफी प्रेरणादायक रही है। भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तब से लेकर आज तक हमारे खिलाड़ियों ने हमें कई ऐसे पल दिए हैं जिन्होंने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है।
1: और अगर भारत के ओलंपिक इतिहास की बात करें तो हॉकी का नाम सबसे पहले आता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व खेल इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।
0: लेकिन आज भारत केवल हॉकी तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। शूटिंग, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक और भाला फेंक जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है।
1: वर्ष 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा और हाल के वर्षों में मनु भाकर जैसे खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया।
0: दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में भारत में खेल का जो माहौल है वो तेजी से बदल रहा है। बेहतर खेल सुविधाएं, वैज्ञानिक परीक्षण और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया मंच प्रदान किया है।
1: आज छोटे शहरों और गांवों के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती।
0: युवाओं के लिए ओलंपिक सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं है बल्कि ये हमें सिखाता है कि सफलता के पीछे कई वर्षों की मेहनत, अनुशासन, धैर्य और कभी ना हार मानने वाला जज्बा होता है।
1: आज जब मोबाइल और सोशल मीडिया हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे समय में खेल हमें शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है।
0: जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप खिलाड़ी ही बने, उसके अलावा भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खेलों को और जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनको अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और भारत वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा जता चुका है। अगर ये सपना साकार होता है तो ये भारतीय खेल इतिहास का एक नया अध्याय होगा और देश के लाखों युवाओं को खेलों से जोड़ने की नई प्रेरणा भी देगा।
0: तो आइए दोस्तों हम अपने खिलाड़ियों का सम्मान करें, खेलों को बढ़ावा दें और फिटनेस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।
1: क्योंकि कौन जानता है, आज का कोई युवा श्रोता ही कल ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगे को दुनिया के सबसे ऊंचे मंच पर लहराए। इसी थॉट के साथ दोस्तों सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत, जो हमने लिया है फिल्म जिगरा मूवी से और जिसे आवाज दी है वेदांगना और वरुण ग्रोवर ने।

0: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
1: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
0: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षा किफायती फीस पर।
0: और परिणाम?
1: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
0: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
2: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
3: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
4: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
5: दोस्तों, हम युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हर रविवार आप सभी के लिए लेकर आते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जहां हम आपसे जुड़ते हैं फोन के जरिए और जानते हैं आपके विचार विभिन्न विषयों पर।
6: और इसी क्रम में प्रस्तुत है दोस्तों आज का हमारा हेलो फ्रेंड्स सेगमेंट, जहां हमने जाने हमारे युवा साथियों के विचार आज के टॉपिक पर, जो कि है उत्तराखंड में नई पर्यटन संभावनाएं। हेलो फ्रेंड्स।
7: हेलो।
6: हेलो, कहां से हैं आप?
7: मैं बहादुरगढ़ से बोल रहा हूं।
6: आपका शुभ नाम क्या है?
7: मेरा नाम है रवि प्रकाश।
6: ओके रवि, तो जो हमारा आज का हेलो फ्रेंड्स सेगमेंट का विषय है उसमें हम उत्तराखंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल में पहाड़ों की कोई ऐसी ट्रिप जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ।
7: जी बिल्कुल, मेरी पहाड़ों की ट्रिप, वैसे मैंने पहाड़ों में कुछ समय बिताया है, लेकिन जो प्रॉपर मेरी ट्रिप थी पहली पहाड़ों की, वो थी 21 साल जनवरी में, मैं चंद्रशिला तुंगनाथ के लिए गया था।
6: बहुत खूब,
7: मतलब बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैकिंग की थी वहाँ पे जाके, बहुत मजा आया था मुझे वहाँ पे पहाड़ पे। वो सर्दियों का टाइम था, सुबह सुबह का, हम जब पीक पे पहुंचे तब जो हमने वहाँ पे सनराइज देखा था, एकदम अंदर से रिफ्रेश करने वाला सीन था वो, तो याद रहेगा आपको लंबे समय तक। जब हमने पहाड़ों पर बर्फ की

0: बहुत बढ़िया लगा था, जहाँ से मुझे उत्तराखंड में बहुत मजा आया था। मैंने उत्तराखंड में वैसे भी अपने जीवन का कुछ हिस्सा बिताया है, तो उत्तराखंड वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे जगह बहुत अच्छा लगता
1: ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपको उत्तराखंड से इतना लगाव है। तो एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के यूथ जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस विषय पर?
0: है। मैं आज के यूथ जनरेशन को इस विषय पर ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, आप ऐसी जगहों पर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके हिसाब से आप रहें, क्योंकि आप खाली घूमने जाते हैं लेकिन उनका वहां पे घर है, तो
1: जी
0: आप साफ सफाई रखें वहां पे जाके, फालतू में गंदगी ना करें, कोई भी ऐसा हो हल्ला शोरगुल रकस क्रिएट ना करें वहां पे जिनसे उनको दिक्कत हो जाए। तो मेरी यही अपील है यूथ से कि एक सेंस बनाए रखें,
1: बिल्कुल
0: घूमने जाए उस जगह की, वहां के लोगों की रिस्पेक्ट करें।
1: सही बात कही आपने सिविक सेंस के ऊपर, और ये बहुत जरूरी भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये बात इस वक्त हमारे सभी युवा साथी और बाकी साथी भी जरूर सुन रहे होंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा गीत आज आप हमारे युवाणी कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं?
0: गीत जो मैं सुनना चाहता हूँ वो है लाल इश्क बाय अरिजीत सिंह।
1: बिल्कुल, हम आपकी इस फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जरूर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू आपका भी मुझे शामिल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत
1: धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो,
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम गुरुदत्त है।
0: तो गुरुदत्त, कहाँ से जुड़े हैं आप आज हमारे साथ?
1: मैं बिहार से भी फिलहाल जुड़ा हूँ और मैं उत्तराखंड देहरादून में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा
0: अरे वाह, कौन सी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप अपनी?
1: हूँ। मैं बीटेक सीएससी में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो गुरुदत्त, जैसे होता है कि हम आमतौर पर अपनी कॉलेज लाइफ में घूमना भी बहुत पसंद करते हैं। हम ज़्यादातर दोस्तों के साथ कभी वीकेंड्स पे या फिर जब भी कभी छुट्टियाँ मिल जाएँ, फ्री टाइम मिले, तो हम इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। तो आप भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ कभी घूमने?
1: हाँ, जबकि हम देहरादून में ही रहते हैं तो देहरादून के पास में इतनी सुंदर सुंदर टूरिस्ट प्लेसेस है कि हाँ, घूमना तो बनता ही है। और काफी बार गया हूँ मैं इसको। पर्सनली
0: अच्छा, तो आमतौर पर किस तरह की जगह जाना पसंद करते हैं आप?
1: मुझे पहाड़, नदियों और वैली ये सब बहुत पसंद है, तो मैं ज्यादातर पहाड़ों पर ही जाना पसंद करता हूँ फिलहाल तो।
0: अच्छा, तो जैसे गुरुदत्त आपने बताया कि आप मूलतः रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ाई करने आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड है या हमारे आसपास के जो भी पर्वतीय इलाके हैं, इनमें जो टूरिज्म है या जो पर्यटन है, उसे और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है?
1: जहां जहां मैंने घुमा और जहां तक मुझे समझ में आया है, तो रिसेंट के दिनों में मुझे लगता है कि क्राउड बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं टूरिस्ट प्लेसेस में। तो मेरा एक सुझाव रहेगा, अगर सुझाव रहे इसको भी आप जो भी कह सकते हैं, कि क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चीज है जो कि होनी चाहिए इन पर्यटन स्थलों में। दूसरी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, साफ सफाई का ध्यान रखना। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे खूबसूरत जगहों में, पहाड़ों पर, झरनों के पास हम घूमने तो जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पर

0: हम अक्सर इन जगहों को गंदा छोड़ देते हैं जब वहां से लौटते हैं। मुझे लगता है हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब भी हम लोग कहीं भी घूमने जाएं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ घूमें और उस जगह को साफ सुथरा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुदत्त आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। आप आज इस कार्यक्रम में अपना कौन सा पसंदीदा गाना सुनना चाहेंगे?
0: एक अरिजीत सिंह का गाना है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इतनी हंसी होगी।
1: जी बिल्कुल, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में आपका ये गाना हम लोग इंक्लूड करें और आपको आपका पसंदीदा गाना सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: सर,
0: हेलो, कहाँ से जुड़े हैं आप आज हमारे साथ? अरे
1: मैं नैनीताल से हूँ।
0: वाह, और आपका नाम?
1: मेरा नाम प्रेरणा है। जी
0: तो प्रेरणा, जैसे आपने बताया कि आप नैनीताल से आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो नैनीताल तो खुद ही एक पर्यटन स्थल है जहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर ताल हैं, इतनी सुंदर मंदिर हैं जहाँ पे घूमने के लिए, इतने लोग वहाँ घूमने आते हैं बाहर से, जो भी हमारे पर्यटक होते हैं। तो आपने तो काफ़ी क्लोजली इन सब चीज़ों को देखा होगा ना,
1: सर,
0: तो प्रेरणा आपको क्या लगता है कि ये जो पर्यटन है ये पिछले कुछ समय में किस तरीके से बदला है और आगे किस दिशा में बढ़ रहा है ये?
1: जी सर, पहले मुझे लगता है लोग मुख्य रूप से गर्मियों में आते थे, लेकिन अब पूरे साल पर्यटक आते रहते हैं। इसका एक कारण मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी हो सकता है, जहां लोग नैनीताल की सुंदर सुंदर तस्वीरें और वीडियो देखते हैं।
0: बिल्कुल, और इसके लिए जो हमारी सरकार है और जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे पुलिस या फिर जो हमारे सुरक्षा बल हैं, वो किस तरीके से इसको आसान बनाने के लिए, पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं?
1: सर, मैंने जो देखा है कि आजकल सड़क संपर्क में काफी ज्यादा सुधार हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यटक बहुत ही आसानी से इन सारे स्थलों तक पहुंच पाते हैं। तो हमारी सरकार और पुलिस इसमें काफी ज्यादा सहयोग कर रही है।
0: तो प्रेरणा, आप भी घूमना पसंद करती हैं?
1: जी सर। सर,
0: तो आप किस तरीके की जगहें घूमती हैं जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो?
1: मैं ज्यादातर कोशिश करती कि मैं किसी प्राकृतिक जगह में जाऊँ। सर, जैसे मुझे पिथौरागढ़ बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं वहां भी काफी घूमी।
0: तो आज के इस कार्यक्रम में आप अपना कौन सा फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगी प्रेरणा?
1: सर, मुझे तुमसे ही बहुत ज्यादा पसंद।
0: ओके, तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपका फेवरेट सॉन्ग आपको ज़रूर सुनाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा, कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा करे।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: यार बीबीए एमबीए तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
4: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
3: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
4: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की बीबीए और एमबीए शिक्षक किफायती फीस पर।
3: और परिणाम?
4: यूटीयू 2025 का एमबीए सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
3: वाह, आईसीएम देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
5: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
6: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जहां आज हमने अपने युवा साथियों से जाने उनके विचार आज के हमारे विषय पर, जो था उत्तराखंड में नई पर्यटन संभावनाएं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये स्पेशल सेगमेंट पसंद आया होगा।
7: सक्षम, जब भी हम वंदे मातरम के इन दो शब्दों को सुनते हैं, हमारी रगों में एक नया जोश और गौरव भर जाता है ना? क्योंकि ये सिर्फ एक गीत नहीं है दोस्तों, बल्कि इस मिट्टी के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारे संकल्प और हमारी पहचान का जयघोष है।
6: बिल्कुल सही कहा नंदिता तुमने। और आज जब हम युवा भारत की बात करते हैं, तो वंदे मातरम का मायना सिर्फ इतिहास को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक नए भविष्य के निर्माण करने के लिए भी है। आज का युवा इस मंत्र को अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी सोच से जीवंत कर रहा है।
7: जी हाँ दोस्तों, आज देश के युवाओं के लिए वंदे मातरम का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, चाहे वो देश को डिजिटल क्रांति में आगे ले जाना हो, खेलों में तिरंगा लहराना हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत के सपने को स्टार्टअप के जरिए सच करना हो। आज की युवा पीढ़ी अपनी हर कामयाबी को देश के नाम कर रही है।
6: आज के युवा का राष्ट्रवाद सिर्फ नारों तक ही सीमित नहीं है, आज का युवा सजग है, जागरूक है। जब वो पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आता है, जब वो समाज के पिछड़े वर्गों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो वो सही मायने में इस मातृभूमि की सेवा कर रहा होता है।
7: इसीलिए इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने किसी विचार को अपने हाथ में लिया, देश में एक सकारात्मक क्रांति आई है। वंदे मातरम वही ऊर्जा है जो हमें रुकने नहीं देती, थकने नहीं देती।
6: तो आइए दोस्तों, आज हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य से इस देश को और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर पहुंच जाएंगे।
7: और चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि देश हमसे है और हम देश से हैं। अपनी ऊर्जा को सही

0: दिशा में लगाए और भारत के गौरव को बढ़ाए।
1: दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। आइए इसी के साथ सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है विशाल शेखर ने और जिसे लिया गया है फिल्म फाइटर से।

0: इसी के साथ दोस्तों हम आ पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का,
1: मगर जाने से पहले दोस्तों आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको हमारा ये आज का युववाणी कार्यक्रम कैसा लगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7088000731।
0: दोस्तों कहीं आपसे ये चीज़ मिस ना हो गई हो तो हम एक बार अपना एड्रेस दोबारा से दोहरा देते हैं। कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, और हमारा पिन है 248001। इसी के साथ दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। साथ ही साथ दोस्तों आप ईमेल द्वारा भी हम तक अपने संदेश व सुझाव पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youth@gmail.com।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप मुझे यानी कि नंदिता भट्ट
0: और मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 MHz पर या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: नमस्कार दगड़ियों, अपर बोली भाषा कार्यक्रम ग्राम जगत में सभी श्रोताओं को स्वागत छ। मी ममता बड़ोला अपर सेवा सोली अपर दगड़ानों को भिजुणु छो सभी दगड़ियों को। और म्यार दगड़ में छन
1: और मी छू कुसुम पिलखवाल। मैं तरफ बैठी ले ठुलन कर पहला प्रणाम और नन नन तिनन का ढेर सार प्रेम शुभाशीष। और ममता जी आप दगड़ तो पहला जूझक भैल रहे एक बार फिर मैं तरफ बैठी आपके लिए नमस्कार।
0: बिल्कुल कुसुम जी, आपको भी पहला और नमस्कार। और कुसुम जी उम्मीद करता कि हमारे सभी सुंदर अपर घर गाँव में राजी खुशी वाल और हम भी भगवान से सभी उनके राजी खुशी के वास्ता कामने कर दें। तो दगड़ियों ये बेरी खूब घाम होना चाहिए और कह पर खूब बरखा बजाय आज तो खूब बरखा हुई हूँ। अब बुनना चाहिए क्या मानसून आने वाले तो ये भगत पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और घाम में जेल तो छतरा ले जाए ना और बरखा में भी जेल तो छतरा ले जानी पड़ल है ना कुसुम जी।
1: हो ममता जी हाँ। आज भूखे हो ना देव एक का जाग में नहीं होना मतलब
0: बिल्कुल
1: थोड़े यहाँ होना फिर थोड़ा जाग घाम आना फिर देव होना तो यो बखत में के होने हमन के अपो स्वास्थ्य ध्यान देने जरूरत पड़ू
0: की
1: हम कब तक देव में जानू फिर भीज जानू फिर हम गर्म में आनू फिर गर्म हजा हम कने तो और आने वाले जो मानसून अब आलने हमारे जो मानसून आने वाले उमेले हमन के बहुत सावधानी धरने जरूरत ले पड़ू ने।
0: बिल्कुल कुसुम जब बस काल लगनी थी ये बार पता क्या स्वास्थ्य खराब होने का डर तो रहती डेंगू
1: होए
0: ये भगत पर डेंगू होना बहुत ज्यादा डर रहती तो अपने घर तो साफ सुथरा रखे ना और जो हमारे बोलता है ना घर पर हम कूलर गमला रख दें तो एक पानी तो बदलना चाहूँ मच्छर बहुत ज्यादा पनप जाने
1: हो ये लीजिए हम के ने वो फ्रिज जो पिछाड़ बटी पानी होने ममता जी उमेले बहुत मच्छर आ जानी है हम सोच लो ना घर भीतर नहीं हल कबीर तो जो फ्रिज पिछाड़ जो पानी होने उमे कोने की जो वीक टेम्परेचर होने वो जो डेंगू मच्छर होने वो लीजिए भल हो कबीर तो मच्छर वहाँ ज्यादा जानी ने।
0: हाँ तो वह तभी भगत भगत पर खाली कर देना चाहूँ ताकि हम भी स्वस्थ रहो और हमारे कुटुंबदार भी स्वस्थ रहे।
1: हो ममता जी तो यो सावधानी ने हमन के द्योण हबीर पहली बटी यह तैयारी
0: करन
1: पड़े ने तो ममता जी हमें छुई बात तो है तब आज एक कार्यक्रम में के बारे में बता दी ने
0: कुसुम जी आज गीत और रविवार तो खैर हम रोज ही सुन दो
1: होए
0: पर आज जन के इतवार च और हमारे सभी सुंदर जनन के आज इतवार को हमारे एक विशेष कार्यक्रम हुंदू श्रोताओं का अनुरोध मा तो दगड़ियों यू कार्यक्रम आपकी वास्ते छ तो आपन हमको चिट्ठी लिखण तो अपन पसंद गीत आप भी सुन सकदा या कुण आप हमको चिट्ठी भेज सकदा। हमारे चिट्ठी पता छ चिट्ठी gramjagat@gmail.com।
1: और श्रोताओं से अनुरोध करनू कि जो हमारे चिट्ठी की लिखवाड़ छी ने
0: बिल्कुल
1: वो अपु पत अपु नौ और अपु पसंदा गीत और गीतकार नौ जरूर लिखिया ने
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एक बार फिर श्रोताओं के पतले बता दियो ने दोबारा चिट्ठी gramjagat@gmail.com। तो जब तक श्रोताओं आप चिट्ठिया तब तक हम अपू पसंदा गीत सुना दिनो ने तो ममता जी को वाल गीत सुना ला
0: तक सुना सरिता भट्ट स्वर्मा सुंदर सी गीत

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: यार BBA MBA तो करना है, लेकिन अच्छी पढ़ाई और कम फीस दोनों साथ कहाँ मिलते हैं?
3: मिलते हैं ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून में, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थान।
2: अच्छा, मतलब गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं?
3: बिल्कुल नहीं, उच्च गुणवत्ता की BBA और MBA शिक्षा किफायती फीस पर।
2: और परिणाम?
3: UTU 2025 का MBA सिल्वर मेडलिस्ट भी इसी संस्थान से है।
2: वाह, ICM देहरादून, 6 ओल्ड मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून।
4: The all-new Nissan Revive अब CNG में।
5: Twin cylinder technology के साथ पाइए third row में भरपूर space, 24 किलोमीटर पर kg की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7-seater, जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
4: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी Nissan dealership पे जाएं। शर्तें लागू।
6: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
7: दगड़ियों रंत रैबार से पहली सरते भट्ट की आवाज़ में सुनना चाहे आप बहुत सुंदर गढ़वल गीत। उम्मीद कर दे कि गीत हमारे सभी श्रोताओं तक खूब भल लगवाल। किले कुसुम जी
8: होए किले हाँ। ने तो बढ़िया उन्होंने गीत गाए अच्छे तो सब भल जरूर लागू ना।
7: गीत भी खूब छे और गीतांग की आवाज़ भी बहुत मीठी छे। तो कुसुम जी, हमारे चिट्ठी झोला अब भरने बैठ गई, तो बताओ दी सबसे पहली चिट्ठी क्या कहीं
8: हुई ममता जी। हाँ। पहली चिट्ठी अरे डिफेंस कॉलोनी देहरादून बट्टी विजय कार्की जी। अच्छा। सीनियर सिटीजन। अच्छा। तो इनन के लिए हम दूनक तरफ बट्टी पहला प्रणाम ने।
7: बिल्कुल प्रणाम।
8: और यह हमारे नियमित श्रोतले छन और यह कुनी की दीपा चौहान को गायो कोई ले गीत सुना दियो बल।
7: बिल्कुल, हमन फरमाइश पर गीत निकाले तो दगड़े सभी सुनो गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दगड़ियों रंत्रैबार से पहल सुनना छे आप दीपा चौहान के स्वरमायु गढ़वल गीत, और ये गीतक अनुरोध करूँ छे विजय कार्की जी को डिफेंस कॉलोनी बिटेन,
4: और आशा करनो कि यह गीत इनके भल लगो।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल लगवा लो।
4: हाँ ममता जी,
3: हाँ
4: आप देखो दे अब क्या एक चिट्ठी आ रहे,
3: एक चिट्ठी और रही या मेरे ख्याल से हमारे पिछले सप्ताह में छे, और वह दिन हमारे जो दगड़े छे वो सुने नहीं साकू ना। पीताम्बर सिंह चौहान जी जो जाखंड देहरादून बिटेन लिखना छे, ये हमारे नियमित स्रोत छन, और यू द्वारका प्रसाद के स्वर में सुन चाणा छन एक गीत, और गीतक बोल छन एक दारा बखरा।
4: होई ममता जी, पर यो गीत ने हमन अपू यहाँ बहुत ढूंढे लो।
3: अच्छा।
4: तो हमन के

0: मिलना है ने,
1: हाँ हाँ
0: तो हम उनर ही गाई ने दोहर गीत के उनके सुने दिनों।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आशा करनू कि यो गीत जो हम इनन के सुनानो ने तो इनन के लिए भल लगल और हमारे जो दोहर श्रोता छी उनके लिए भल लगल ने।
1: बिल्कुल कुसुम जी, तो सुनान छापर दगड़ो थे द्वारिका प्रसाद जी की आवाज में सुंदर सी गीत।

0: श्रोताओ, अल्ले आपन सुनो द्वारिका प्रसाद को गयो भलो भल यो गीत, और यो गीतक अनुरोध कर अच्छी पीताम्बर सिंह चौहान जी जाखन बटी। अच्छा। आशा करनु कि यह गीत उनके भल लगुनल, और उनर अलावा जो हमारे दोहर श्रोता छे ने उनके लिए जरूर भल लगुनल।
1: बिल्कुल कुसुम जी, गीतक फरमाइश एकक रोंदी और हमार सुंदर सभी सुन लेना है ना। तो कुसुम जी, एक चिट्ठी और आई छू उषा पांडे सरस्वती विहार देहरादून बटेन। उषा जी अनुरोध करना चाहिए कि हया सिंह बोरक स्वर में उतर एक सुंदर सी कुमाऊनी गीत सुने जा।
0: होए तो सुने दिनों पे उनार पसंद का गीत ने ममता जी।
1: बिल्कुल कुसुम जी, बिल्कुल।

आय तू जाली बाजारा सुवा घरवाला रिसाला ये तल गदेरी मल गदेरी।

0: श्रोतालाई आपन सुनौ हयात सिंह बोराको गायो भलो भलियो कुमाउनी गीत और यो गीतक अनुरोध करी उषा पाण्डे जी सरस्वती विहार बटी और आशा करनु कि उषा पाण्डे जी के यो गीत भल लागुनल और उषा जी ने अनुरोध ले करनु कि अगिन के लिए हमन के ऐसके ही चिट्ठी लिखते रहा और अपू अनुरोध गीत भेजते रहा।
1: बिल्कुल, और उषा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद कर दे।
0: ममता जी
1: हाँ,
0: अब देखो देख एक चिट्ठी आ रही आई
1: कुसुम जी, आज खारी चिट्ठी आना चाहिए तो एक चिट्ठी और ही आई छ, एक कोटद्वार बेटे लिखना चाहिए और दीपा भारद्वाज जी छन, उनको अनुरोध कि जितेंद्र पवार शर्मा वाली एक भलू सिख गढ़वल गीत सुने दिया तो किले ने अपन श्रोता तो सुनानी पड़ा लगता है ना, तो दगड़े सुने सभी दगड़े सुना मरियो बढ़िया सी गीत।

0: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह। सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
1: रविंद्र, ये बताओ, सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
2: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
1: सच में? क्या क्या है उसमें?
2: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी, अधिकार भी।
3: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
4: श्रोता और अंतराय बार है मेरे पहली हमून सुनो। जितेंद्र पवार को गायो भलू भल गढ़वाली गीत और यौ गीत तक अनुरोध कर रोची कोट द्वार बटी दीपा भारद्वाज झील। तो आशा करनो यौ गीत इन के जरूर भल लागो ना।
5: बिल्कुल कुसुम जी, उनका पर अनुरोध भिजू छे तो गीत भल तो लगे वाल और गीत भी भलू छे। बहुत सुंदर आवाज छे जितेंद्र जी के। तो कुसुम जी, गढ़वाल और कुमाऊं तो हम और हमारे श्रोता घूम आए हो, तो अब मिते इन लगने एक चिट्ठी जौनसार बिटे भी है। तो क्या चिट्ठी छे यार?
4: ममता जी, एक चिट्ठी यो अरे विकास नगर बटी मुकेश चौहान जी और यो सुनन चानी अंशु वर्मा को गायो कोई ले जौनसारी गीत के।
5: अच्छा, तो सुनन चा अंशु वर्मा स्वर में सुंदर सी जौनसारी गीत।

0: दगड़ियों, अभी सुने छे आप अंशु बर्मक फरमा जो सारी गीत और एक गीतक फरमाइश छे विकासनगर बेटे मुकेश चौहानक।
1: हाँ, और आशा करनु कि मुकेश चौहान जी के और हमारे दो श्रोताओं के लिए यो भल्ला घुनल ने।
0: बिल्कुल कुसुम जी, बहुत सुंदर गीत छे।
1: होई और श्रोताओं, अब माठू मठ कबीर बखत होने वाल छू उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचारों, तो आवाज झिटकड़ी में सुनु उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। कहा, जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से राज्य की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, सरकार उत्तराखंड को पारंपरिक पर्यटन के साथ ही आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित कर रही। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियोरोधी दवा की खुराक पिलाई गई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समय देश में ऐसे 40 और विमान बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एरोस्पेस क्षेत्र को तेजी मिल रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है।
6: हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहाँ INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है।
5: वहीं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम जन भागीदारी को सशक्त बनाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का प्रभावी माध्यम बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश सबकी प्रयास की भावना को और अधिक सशक्त करते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से ही विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंचीधाम क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यहां आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा। श्री मेघवाल आज नैनीताल पहुंचे और उन्होंने प्रसिद्ध कैंचीधाम मंदिर पहुंचकर बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैंचीधाम न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का भी स्रोत है। इससे पूर्व सांसद अजय भट्ट ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के हल्द्वानी पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इस दौरान श्री भट्ट ने कहा कि मेघवाल का प्रशासनिक अनुभव एवं राष्ट्रहित के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने डीएलएड द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि मई में यह परीक्षा आयोजित की गई थी और परीक्षा के परिणामों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
7: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
5: रुड़की में युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद कर रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप तथा कौशल विकास जैसे विषयों पर उनके सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने युवाओं की ऊर्जा और नवाचार को विकसित उत्तराखंड के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बताया। युवाओं से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और राज्य की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को विकसित उत्तराखंड का सबसे बड़ा कर्णधार बताया और रोजगार, स्टार्टअप व कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की।
8: जनता भी ये भली भांति समझ चुकी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ही उनके बच्चों को सुरक्षित भविष्य, वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम कर सकती है और इसके लिए प्रयास भी कर रही है कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं में जो टैलेंट है, हुनर है, उसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के आप जैसे हमारे सभी युवा

0: सभी नौजवान, सभी छात्र और छात्राएं तकनीकी और नवाचार के माध्यम से हमारे राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे।
1: खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को पारंपरिक पर्यटन के साथ साथ आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि यह आयोजन देश में आइस स्केटिंग को बढ़ावा देने के साथ ही उत्तराखंड को बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब केवल पर्यटन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शीतकालीन खेलों के लिए भी देश और दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाद्री आइस रिंक देश का एकमात्र सबसे आधुनिक विश्व स्तरीय इंडोर आइस रिंक है जो राज्य की खेल क्षमताओं को नई दिशा देने का काम कर रहा है।
2: आने वाले समय में आइस स्केटिंग में जो हमारे एथलीट हैं निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से प्रशिक्षण हो रहा है, जिस प्रकार से प्रतियोगिताएं निर्बाध तरीके से हो रही हैं, आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में भी हो, एशियन गेम्स में हो, चाहे वो हमारे ओलंपिक की प्रतियोगिताएं होंगी, आइस स्केटिंग के क्षेत्र में हमारे एथलीट का भविष्य जो है बहुत उज्जवल दिखाई पड़ता है। देश का पहला हमारा हिमाद्री आइस स्केटिंग रिंग है और मैं समझती हूँ कि यहाँ से निश्चित रूप से ऐसे एथलीट निकलेंगे जो आने वाले समय में अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे।
1: खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। सीमांत जिला चमोली में भी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर SIR अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जिले में अब तक 100% गणना प्रपत्रों का वितरण हो चुका है, साथ ही नुक्कड़ नाटकों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मतदाता सत्यापन के कार्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले में अब तक इस अभियान के तहत 99% से अधिक गणना पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 70% डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों व BLO को प्रपत्रों के संग्रहण के साथ साथ डिजिटाइजेशन कार्य में भी तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि अभियान की प्रत्येक गतिविधि तय समय सीमा के अनुरूप पूर्ण हो सके।
3: देखिए, हमारे जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में भी SIR का कार्य गतिमान है। इसमें फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन एक चरण था जिसको हमने 100% पूरा कर लिया है। इसके द्वितीय चरण में अभी हम जो फॉर्म हमको भरकर प्राप्त हो रहे हैं उनको डिजिटाइज किया जा रहा है। आज सुबह 6-8 बजे तक 60% कार्य हमने पूर्ण कर लिया है और चूंकि 2 जुलाई तक का समय हमको इस कार्य के लिए मिला है, हम अपना पूरा कार्य समय से कर लिया।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियोरोधी दवा की खुराक पिलाई गई। देहरादून में महात्मा गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही चमोली, नई टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग समेत सभी जिलों के आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों में नौनिहालों को पोलियोरोधक ड्रॉप पिलाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। कहा, जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से राज्य की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, सरकार उत्तराखंड को पारंपरिक पर्यटन के साथ ही आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित कर रही और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियोरोधी दवा की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: बात है, बड़े दिनों बाद।
5: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
4: अरे वही अपना 60 रुपया।
5: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
4: तो देख, 2 तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
5: और दूसरा?
4: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।

0: लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार बाद एक बार फिर स्वागत छू आपक अबू भोली बादशाह का कार्यक्रम ग्राम जगत माँ और आपका दगड़ में मीचू कुसुम पिलखवाल और
5: मीचू ममता बड़ोला अपर बोली भाषा कार्यक्रम एक बार फिर स्वागत करता। तो कुसुम जी अपन झोला था एक बार फिर हिले ले आवे कोई चिट्ठी और बची छ
4: कोई? ममता जी एक चिट्ठी आई अरे और यो चिट्ठी अरे मधु कंडवाल ग्राम बनाली पौड़ी गढ़वाल बटी।
5: अच्छा,
4: और यो सुनन चानी की सौरभ मेठानी को गायो को लगी सुना दियो कुनियो।
5: अच्छा, तो सुहाल साहब मधु जी तय उनको फरमाइशी कार्यक्रम में उनको पसंद को गीत तो ले सभी सुनो यू गीत।

0: दगड़ियों सरो मैठाणी आवाज में सुन छा आप यू सुंदर सी गढ़वल गीत और एक गीत का अनुरोध करियो जाई मधु कंडवाल ग्राम बनाली द्वारिखाल ब्लॉक बटेन पौड़ी गढ़वाल बटेन और यू का अनुरोध में सुनाया मन सौरभ मैठाणी की आवाज में यू गीत और उम्मीद करते कि गीत होते बहुत सुंदर लगवाल
1: हो और ममता जी यह गीत और जो हमारे दोहर श्रोता सुनने ने उनके लिए भल लगनाल ने
0: बिल्कुल सब तो बहुत बढ़िया लगवाल
1: हो तो ममता जी एक चिट्ठी आई है रे यह चिट्ठी है रे राज राजेश्वरी पूरम बट्टी हिमानी मेहराक
0: अच्छा
1: और यह कोनी की कार्यक्रम जो छू वो बहुत बढ़िया चलनो
0: बिल्कुल
1: और कुसुम जी और ममता जी के प्रणाम
0: अच्छा हमारे तरफ बटेन भी हिमानी जी को बहुत बहुत प्रणाम
1: हो और यो कुने की इनके हीरा सिंह राणा को गायो कोले गीत सुना दियो बल
0: अच्छा तो ले सुनो हीरा सिंह राणा का आवाज में यो गीत

0: दगड़ियों, हिमानी मेरा अनुरोध में सुनना छा आप यू कुमाऊनी गीत, और ये गीत गीतांग छा हीरा सिंह राणा।
1: हो ममता जी, और यौ का दगड़ ही मी कुसुम पिलखवाल
0: और ममता बडोलत है।
1: आज गाम जगत कार्यक्रम के बटोनक ये आज्ञा दिया भूल के फिर भेटी हो ना आप दगड़।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तब तक अगवास्ता, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:50 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी सरिता भट्ट। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में देश विदेश का लोगों से अपना विचार साझा करें। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोरदार में तेली स्रोत नदी पर 2,37,00,000 रुपए से निर्मित स्पान डबल लेन पुल को लोकार्पण करी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने डीएलएड द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित करें। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का तहत प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु का बच्चों थे पोलियो रोधी दवा की खुराक पिले गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि जून का महीना में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान का दगड़ी ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करी। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन बोली कि ये बगत देश में इना 40 और विमान बने जाना छिन। श्री मोदी ने बोली कि ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र थे तेजी मिलनी च, रोजगार का नया अवसर सृजित होना छिन और आत्मनिर्भर भारत को संकल्प मजबूत होनु च।
3: हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहाँ INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है।
0: वकील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में कार्यकर्ताओं का दगड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम का 135वां संस्करण थे सुनी। ये अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने बोली कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम जन भागीदारी थे सशक्त बनाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन खुने प्रेरित करने का प्रभावी माध्यम बन गया। मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रधानमंत्री को संदेश सबका प्रयास की भावना थे और अधिक सशक्त कर दिन। समाज का प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से ही विकसित भारत को संकल्प थे साकार करे जा सकत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 135वां संस्करण थे देहरादून स्थित गढ़ी कैंट डाकरा में पार्टी कार्यकर्ताओं दगड़ी सुनी। ये दौरान श्री जोशी ने बोली कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देश का करोड़ों नागरिकों थे जोड़ने वालों एक सशक्त संवाद को माध्यम च। उन बोली कि यू कार्यक्रम जन भागीदारी की भावना थे सशक्त बनाने को बनाना का दगड़ दगड़ी राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका थे भी रेखांकित कर द। विधानसभा अध्यक्ष एवं कोरद्वार विधायक ऋतु भूषण खंडूड़ी ने पौड़ी जिला का कोरद्वार में कोरद्वार शिवपुर किशनपुरी चिलरखाल मार्ग पर तेली स्रोत नदी पर 2,37,00,000 रुपए से निर्मित स्पान डबल लेन पुल को लोकार्पण करी। ये दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बोली कि यू पुल क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता थे और पुल का वर्ण से क्षेत्र का हजारों लोगों थे वर्ष भर सुरक्षित सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलली। उन बोली कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत ढांचा थे मजबूत करने खुणे निरंतर कार्य करे जाना छिन। यू पुल केवल आवागमन को साधन नहीं बल्कि क्षेत्र का विकास, बेहतर संपर्क और आर्थिक गतिविधियों थे गति देण वालों महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा च। विधानसभा अध्यक्षन बोली कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक गांव तक गुणवत्तापूर्ण सड़क, पुल और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की विकास को लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करण च।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताज़ा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने डीएलएड द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित करिन। सचिव विनोद प्रसाद सिमंटिन बताया कि मई में यह परीक्षा आयोजित करेगे छे और परीक्षा का परिणामों

0: बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करिए ली। कैबिनेट मंत्री एवं श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास खंड पाबो क्षेत्र में 4,85,00,000 रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास योजनाओं को शिलान्यास एवं लोकार्पण करी। ये दौरान उन बोली कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं थे सुदृढ़ करना खुणे निरंतर कार्य करनी चाहिए। डॉक्टर रावत ने बोली कि राज्य सरकार विकास योजनाओं को लाभ समाज का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने खुणे प्रतिबद्ध च। उन बोली कि विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं समय बद्धता सुनिश्चित करण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता च। वखी क्षेत्र का ग्राम सलना में कैबिनेट मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय त्रिलोक सिंह भंडारी की स्मृति में निर्मित स्मृति द्वार को लोकार्पण कर बोली कि स्वतंत्रता सेनानियों को त्याग और समर्पण राष्ट्र की अमूल धरोहर च और उनका आदर्श सदैव नई पीढ़ी थे राष्ट्रीय सेवा खुणे प्रेरित करदा राला। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का तहत प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु का बच्चों थे पोलियो रोधी दवा की खुराक पिले गया। देहरादून में महात्मा गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय बटी बच्चों थे पोलियो रोधी दवा पिले की अभियान को शुभारंभ करे गया। एक दगड़ ही चमोली नई टिहरी पौड़ी रुद्रप्रयाग समेत सभी जिलों का आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों में 9 निहालों थे पोलियो रोधक ड्रॉप पिले गया। निर्वाचन आयोग का निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चले जाणु च। सीमांत जिला चमोली मां भी निर्वाचन आयोग का विशेष निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चले जाणु च। जिला मां अब तक 100% गणना पर पत्रों को वितरण हुए चुके। दगड़ा ही नुक्कड़ नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का माध्यम से लोगों थे मतदाता सत्यापन का कार्यों का प्रति जागरूक करे जाणु च। जिला मां अब तक ये अभियान का तहत 99% से ज्यादा गणना पर पत्र वितरित करे जाए चुके छिन जबकि 70% डिजिटाइजेशन को कार्यपूर्ण हो चुके। जिला अधिकारी गौरव कुमारन बताए कि निर्वाचन आयोग का निर्देश पर जिला में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चले जाणु च। उन सभी संबंधित अधिकारियों व बिलों थे परपत्र का संग्रहण का दगड़ा दगड़ी डिजिटाइजेशन कार्य में भी तेजी ले जाना का निर्देश दीन ताकि अभियान की प्रत्येक गतिविधि तय समय सीमा का अनुरूप पूरी हो सको।
1: देखिए हमारे जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में भी SIR का कार्य गतिमान है। इसमें फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन एक चरण था जिसको हमने 100% पूरा कर लिया है। इसके द्वितीय चरण में अभी हम जो फॉर्म हमको भरकर प्राप्त हो रहे हैं उनको डिजिटाइज किया जा रहा है। आज सुबह 6-8 बजे तक 60% कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। चूंकि 2 जुलाई तक का समय हमको इस कार्य के लिए मिला है हम अपना पूरा कार्य समय से कर लिया।
0: हरिद्वार का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वर्षा ऋतु का दौरान गंगा एवं सहायक नदियों का जल स्तर में संभावित वृद्धि है देख जिला में संचालित रेत बजरी एवं बोल्डर चुगान और मिट्टी खुदाई पर 30 जून से सूर्यास्त का बाद से अग्रिम आदेशों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाना का निर्देश जारी करें। जिला अधिकारी ने बताया कि यू आदेश निर्देशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निर्देशालय उत्तराखंड द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन में जारी करेगा। एक तहत जिला में RBM चुगान एवं मिट्टी खुदाई खुणे जारी सभी अनुज्ञापत्र एवं अनुमतियां 30 जून का सूर्यास्त का बाद से अगला आदेश तक प्रभावी राली। उनका सभी पट्टा धारकों एवं अनुज्ञा धारकों थे निर्देशित करी कि निर्धारित समय का बाद RBM चुगान एवं मिट्टी खुदाई को कार्य तत्काल बंद करें। अंत में मुख्य समाचार एक दाब फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में देश विदेश का लोगों से अपना विचार साझा करें। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोड़ी भूषण ने कोरदार में तेली स्रोत नदी पर 2,37,00,000 रुपए से निर्मित स्पान डबल लेन पुल को लोकार्पण करी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने DLED 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित करें और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का तहत प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु का बच्चों थे पोलियो रोधी दवा की खुराक पिले गया। एक दगड़ी ही गड़ोली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूं। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका भैया विकास चमोली। तो साथियों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है इन दिनों खेतीबाड़ी? भाई, गर्मी तो आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में हमने खेतीबाड़ी के कामकाज के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है। आजकल लू लग सकती है गर्मी के कारण, और भी कई सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो पानी की कमी से हो जाते हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में आप तरल पेय पदार्थों का सेवन करिए, मौसमी सीट्रस फल जो हैं उनका आप सेवन करिए। और हमारे किसान तो क्योंकि पशुपालन करते हैं तो दूध दही मट्ठा ये सब हमारे घरों में पर्याप्त मात्रा में होता है, तो मट्ठे का खूब सेवन करिए ताकि आप स्वस्थ रहें और दिन के समय साथियों थोड़ा सा बाहर निकलने से आप बचें। जो भी खेती किसानी के काम हैं हो सके तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के उनको आप कर सकते हैं और शाम के समय भी आप उनको कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में थोड़ा हमें बचना चाहिए क्योंकि जो दोपहर की धूप है ये साथियों हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है। अब साथियों, जैसे खेतीबाड़ी की आप तैयारी कर ही रहे हैं, धान की फसल हमारे किसानों ने लगानी है और नर्सरी हमारे खेतों में बहुत अच्छी खड़ी है। जुलाई माह के आगमन के साथ ही अब रोपाई की तैयारी भी हमने करनी है। इंतज़ार है तो बस मौसम का कि कब मानसून आए और हम अपनी रोपाई की तैयारी करें। लेकिन साथियों, अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले तो आप मेड़ों की एक तो अच्छे से साफ सफाई कर लें। मेड़ों में साथियों जो अनावश्यक खरपतवार उगे होते हैं, इनमें कई सारे कीट और कई सारे रोग इनमें से ही पनप जाते हैं और हमारी फसलों को वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो भी घास या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या छोटी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनको आप साथियों अच्छे से साफ करिए। कुदाल, खुरपी, इन सब से आप उनको निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो अगला काम हो जाता है वो है मेड़ों पर मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी चढ़ाने से देखिए साथियों, एक तो खरपतवार नष्ट भी हो जाएंगे जब हम उनको मिट्टी से पूरी तरह से लेप देंगे, और भविष्य में क्योंकि आने वाला समय बरसात का होने वाला है तो पर्याप्त मात्रा में खेतों में पानी भी रुकेगा और भूमि का कटाव भी साथियों इससे बचता है। और तीसरा साथियों, जल निकासी का प्रबंध भी आप अभी कर लें। बरसात में अक्सर हम देखते हैं कि खेतों में ज़्यादा पानी भरने से हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो जाता है, तो आप अभी से ही अगर सचेत रहेंगे, जल निकासी की उचित व्यवस्था रखेंगे तो आपकी खेतों में पानी रुकेगा ही नहीं। और हाँ, अगर आपकी खेतों में जैसे निचली निचली हमारी खेतों में ज़्यादा पानी भर जाता है तो अगर वहाँ पर आप किसी ऐसी प्रजाति को लगाएं जो ज़्यादा पानी में भी अच्छा उत्पादन दे सके तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए साथियों, अब कार्यक्रम में हम करते हैं आपका मनोरंजन और सुनाते हैं एक रागिणी।

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: शिक्षा ऐसी जो आत्मविश्वास जगाए, डिग्री ऐसी जो सफलता दिलाए, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक पाठ्यक्रम और उज्जवल करियर की राह, सुभारती यूनिवर्सिटी, प्रेम नगर, देहरादून। एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 8043541070 या विजिट करें rbbsu.edu.in। सफलता के कदम सुभारती के संग।
4: पापा लाइए 3000।
5: क्यों भाई?
4: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
4: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
5: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
4: अपना मोबाइल लाओ।
5: ले ले।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथियों, खरपतवार प्रबंधन की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से खरपतवार प्रबंधन से आने वाले समय में हम अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और साथियों, अब जैसे आने वाला समय बरसात का है, तो हमारे कई ऐसे साथी हैं जो बगीचे लगाते हैं और वृक्षारोपण भी साथियों बरसात में खूब किया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह भी हम जुलाई माह में मनाते हैं। लेकिन साथियों, किस तरह से हमने बागवानी करनी है ताकि अच्छा उत्पादन हमारे किसानों को मिल सके, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर है, मैदानी भूभाग यहाँ पर है, किस तरह के बागों का हमने चयन करना है, कौन

0: से फलदार वृक्ष कब लगाने हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार से डॉक्टर रेणु। तो आइए करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत और जानते हैं बागवानी से किस तरह से हमारे किसान आमदनी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रेणु, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। नमस्कार किसान साथियों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार से विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान डॉक्टर रेणु। और डॉक्टर साहब से आज हमारी बातचीत का विषय है बागवानी से आमदनी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की हम बात करें, यहाँ पर मैदानी भूभाग है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, तो हमारे किसान साथी खेती बाड़ी के साथ साथ अगर बागवानी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आय के लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो किस तरह से बागवानी हम कर सकते हैं, नए आयाम क्या हो सकते हैं, इस विषय पर जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद विकास जी, मेरे सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आज का विषय है बागवानी से आमदनी, तो मैं हमारे कृषक बंधुओं को बताना चाहूंगी कि बागवानी से हमारे कृषक बंधु कम भूमि में ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परंपरागत खेती की बात करें तो इतना ज्यादा उत्पादन हमें नहीं मिल पाता, लेकिन बागवानी अपने आप में ही काफी विस्तृत विषय है। उसमें हम फलों की भी बात कर सकते हैं, सब्जियों की बात कर सकते हैं, मशरूम उत्पादन की बात कर सकते हैं और फूलों की बात कर सकते हैं। तो बागवानी एक ऐसा विकल्प है हमारे किसान भाइयों के लिए जिससे कि हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि हमें किन फसलों का चयन करना है, हमें किन प्रजातियों का चयन करना है और हमें कौन सी ऐसी वैज्ञानिक तकनीकें अपनानी है जिसके आधार पर हमारे कृषक बंधु अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम फल वृक्षों की बात करें तो फल वृक्षों में आपने देखा होगा कि जो हमारे कृषक बंधु थे पहले समय में, वो पौधे से पौधे की दूरी काफी ज्यादा रखते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो 8 से 8 मीटर, 10 से 10 मीटर, पंक्ति से पंक्ति और रो से रो की दूरी। लेकिन अगर हम सघन बागवानी की बात करें तो हमारा प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है हमारा, उसमें हम ज्यादा मात्रा में पौधा लगा सकते हैं। तो पौधों की संख्या क्या होगी, प्रति क्षेत्रफल बढ़ जाएगी। अगर पौधों की संख्या प्रति क्षेत्रफल बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने पौधे को कैसे वैज्ञानिक तकनीकों से उपचारित करना है, कैसे हमें पौधा रोपण करना है, कैसे हमें अपने खेत की तैयारी करनी है और कैसे हमें कैनोपी मैनेजमेंट करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपने कृषकों की उपज को बढ़ा सकते हैं और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, जैसे फल वृक्षों की डॉक्टर रेणु आपने बात की, उत्तराखंड में हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, तो क्या ऐसे में अगर बागवानी हम करते हैं और कुछ ऐसी प्रजातियां जिनको हम लगा सकें जिनको जंगली जानवर कम नुकसान पहुंचाए, तो वो भी हमारे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है?
1: जी हाँ, आपने सही बोला कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के किसान बंधु हैं वो ज्यादातर जंगली जानवरों की समस्या से काफी परेशान होते हैं जी। तो उसके लिए हम लोग ऐसी प्रजातियों का चयन कर सकते हैं और ऐसे फल वृक्ष लगा सकते हैं जिससे कि जंगली जानवर काफी कम मात्रा में नुकसान करे। जैसे कि अगर हम कीवी की बात करें तो कीवी हमारे कृषक बंधु लगा सकते हैं और उसको जो लगाने का समय होता है वो दिसंबर जनवरी होता है, क्योंकि उस समय जो हमारे पौधे होते हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं। तो हम पहले ही हमें गड्ढे खोद लेने चाहिए और उसके बाद हमें अपने खेत में अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद और जो भी हमारे ट्राइकोडर्मा पाउडर उसमें मिला के और उपजाऊ मिट्टी उसके हमें गड्ढों में अच्छी तरह से डालकर अच्छे से हमें खेत 1 महीने पहले ही अपना तैयार कर लेना चाहिए। और 1 महीने के बाद, क्योंकि जब हम अपने खेत में हम फल लगाते हैं तो क्या होता है, मिट्टी जनित काफी सारे रोग होते हैं और हमारे पौधों को नुकसान पहुंचता है, तो इसीलिए हमें 1 महीने पहले ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। कीवी में अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स का रिच सोर्स है। और साथ ही साथ जो बंदरों की समस्या आपने बताई, उससे भी हमारे जो कृषक बंधु हैं वो निजात पा सकते हैं। तो इसमें हमारी जो वैरायटीज हैं जैसे कि एलिसन है, आप उसके लगा सकते हैं पौधे। और साथ ही साथ इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नर और मादा, क्योंकि कीवी में जो नर और मादा है वो अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं,
0: जी
1: तो उसके रेशियो का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1:8 के अनुपात में लगाना होगा,
0: अच्छा,
1: यानी कि 1 नर के साथ 8 मादा
0: 8 मादा पौधे
1: आप लगा सकते हैं।
0: जी। डॉक्टर साहब, जैसे कीवी की आपने बात की, इसके अलावा अगर हम ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो पहाड़ों के लिए क्या ये भी हमारे किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है?
1: देखिए, ड्रैगन फ्रूट आजकल बहुत ही अच्छा विकल्प है हमारे कृषक बंधुओं के लिए, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए, जैसे कि हमारे पहाड़ों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी है, तो ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी फसल है जो कि कम पानी में भी आसानी से हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक सक्यूलेंट है, ठीक है, उसे इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि ड्रैगन फ्रूट के लिए हमें इतनी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं है, तो ड्रैगन फ्रूट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उसमें भी काफी सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि उसमें आपने देखा होगा कि एक लाल गूदे वाली प्रजाति होती है और एक पीले गूदे वाली प्रजाति होती है, तो उसमें एक रेड जंबो है, उस प्रजाति का आप चयन कर सकते हैं, और साथ में एलाइस रेड है, वियतनाम रेड है, तो ये सारी प्रजातियां हमारे कृषक बंधु लगा सकते हैं। और ड्रैगन फ्रूट आपका एक बार आप लगा देंगे तो 20 से 25 वर्षों तक वो अच्छा फल उत्पादन देता है। हमारे कृषक बंधु इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं, इसकी जो पौधे हैं वो कटिंग से आसानी से तैयार किए जा सकते हैं।
0: डॉक्टर रेनू, इस समय मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें तो आने वाले समय के लिए हमारे किसान तैयारी में हैं, गड्ढे इन दिनों खोदे जा रहे हैं। अगर इस समय हमने मैदानी क्षेत्रों में बाग लगाने हैं तो कौन-कौन से फलों का चयन हम कर सकते हैं और किन सावधानियों का हमने अब ध्यान रखना है?
1: हाँ जी, देखिए, अब अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो आपने देखा होगा कि अब बरसात हमारी शुरू होने वाली है, तो हमारे कृषक बंधुओं ने 1 महीने पहले ही जैसे गड्ढे खोद लिए हैं, तो इस समय हम आम, लीची, अमरूद और नींबू वर्गीय पौधे हैं उनका हम चयन कर सकते हैं। और अगर आम की मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सघन बागवानी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, तो आम के केस में हम आम्रपाली जो प्रजाति है, मल्लिका प्रजाति है, उसका हमारे कृषक बंधु चयन कर सकते हैं। और हमें ये देखना होगा कि जिस भी पौधे का हम चयन कर रहे हैं वो हमारा लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक का होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी ना हो, रोगग्रस्त ना हो। और जब आप उस पौधे को लेकर आए तो उससे पहले उसकी जो जड़ें हैं उसको किसी फफूंदनाशक से घोल से, जैसे कि आप ट्राइकोडर्मा पाउडर ले सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप घोल बना लीजिए और उसको, उसकी जो हमारा जो पौधा है उसकी जड़ों को अच्छे से घोल में डुबो के रख दीजिए, फिर आप उसकी रोपाई कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो जड़ों में परेशानी हो जाती है, हम पौधा तो लगाते हैं लेकिन क्या होता है कि वो अच्छे से उपज नहीं दे पाता, तो इस परेशानी से जो फफूंद हमारे पौधों में लग जाता है उससे हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप पौधा लगाएं तो इतना ध्यान रखें कि जो आपने जगह सिलेक्ट करी है वहां की मिट्टी ऐसी ना हो कि उसमें कंकड़ पत्थर हो, क्योंकि ये जो हमारे पौधे होते हैं इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, तो अच्छे से गहराई में रूट का पेनिट्रेशन हो पाए, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम आम की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आम्रपाली किस्म है, अगर हम वो परंपरागत बागवानी से लगाते हैं तो वो हम 10 बाई 10 की दूरी में लगाते हैं, तो उसमें हमारे लगभग 100 पौधे लगेंगे। लेकिन अगर वही हम सघन बागवानी में लगाएं तो उसका जो हमारी दूरी होती है वो हमारी 2.5 मीटर से 2.5 मीटर तक की हम दूरी रखते हैं, तो उसमें जो हमारे पौधों की संख्या है वो लगभग 1600 पौधे हम प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार परंपरागत तकनीक से हम प्रतिवर्ष 50 से 80 हजार रुपए हम प्राप्त कर सकते हैं, और वही अगर हम सघन बागवानी की बात करें तो हमारे कृषक बंधु 1.5 से 2 लाख रुपए की आय प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कृषक बंधुओं को ऐसी प्रजातियों का चयन करना है जिससे कि वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। और यही अगर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद में जो प्रजातियां हैं जैसे कि इलाहाबादी सफेदा, ललित है और पंत प्रभात है, तो इसे भी हम सघन बागवानी की तकनीक से लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसे बागों के बीच में जैसे पेड़ हमारे हैं उनके बीच में अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमारे किसान साथी उस भूमि का इस्तेमाल करके जैसे सब्जियों का एक बड़ा बाजार आज हमारे किसानों को मिला।

0: फसलों का चयन कर सकते हैं, खास तौर से सब्जियों में,
1: हम्म,
0: जैसे कि आप बेल वाली फसलें लगा सकते हैं उसके साथ, उसके साथ आप टमाटर लगा सकते हैं, ठीक है, और
1: पत्तेदार
0: जब
1: सब्जियां जैसी
0: हाँ
1: हैं।
0: पत्तेदार सब्जियां आप लगा सकते हैं उसके साथ, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो कृषक बंधु हैं वो अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा वृक्ष बड़ा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो कि छाया में अच्छा उत्पादन दे सके, जैसे कि हल्दी हो गई और अदरक की फसल हो गई, तो ये सारी फसलें लेकर हमारे कृषक बंधु अच्छा उत्पादन कर सकते हैं
1: जी
0: सब्जियों के साथ। विकास जी, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारे जो कृषक बंधु हैं वो गेंदे की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गेंदा है उसके अंदर निमेटीसाइड प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि वो निमेटोड की जो प्रॉब्लम हो जाती है फसलों में उसके प्रति प्रतिरोधक होता है, साथ ही जो हमारा रस चूसने वाले जो कीट पतंगे होते हैं उसको भी वो ट्रैप करता है, एक तरीके
1: अच्छा।
0: से वो ट्रैपिंग की तरह काम करता है हमारा जो
1: यानी
0: गेंदा
1: कि
0: है।
1: बागों की कई सारी समस्याएं, अगर जैसे रोग कीट की हम बात करें,
0: हाँ जी,
1: तो वो गेंदे को लगाने से काफी हद तक दूर हो सकते हैं।
0: हाँ गेंदा भी आप लगा सकते हैं, और इसके साथ ही जो गेंदा है हमारा वो पॉलिनेशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गेंदा जो है उसके अलग अलग से रंग होते हैं, ऑरेंज कलर का होता है, पीले रंग का होता है, तो वो क्या करता है मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, तो जो हनी बीज हैं वो हमारे पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो आप चारों तरफ मतलब बॉर्डर्स में आप गेंदा भी लगा सकते हैं, बीच में आप अंतर फसल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हल्दी ले सकते हैं और आप अदरक ले सकते हैं, अगर हमारा वृक्ष जो है हम लगा रहे हैं बाग थोड़ा बड़ा हो जाए, और अगर छोटी स्थिति में तो है आप कद्दू वर्गीय सब्जियां भी ले सकते हैं, पत्तेदार सब्जियां भी ले सकते हैं, और साथ में टमाटर भी ले सकते हैं।
1: जी, चलते चलते डॉक्टर साहब ये भी जानते हैं कि कई बार हमारे किसानों के पास जैसे फलों का उत्पादन है बहुतायत मात्रा में, अगर वो है और बाजार तक उनको वो नहीं पहुंचा पाए, तो किस तरह से फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से वो अपने जो फल हैं उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और सही उत्पाद तैयार कर सकते हैं।
0: हाँ जी, ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग अगर आप किसी चीज को रॉ यानी कि कच्चा बेच रहे हैं तो आपको इतना लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर वही चीज आप प्रोसेसिंग करके उसको उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर हम फलों की बात करें तो हमारे कृषक बंधु उसका अचार बना सकते हैं और जेली बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप सिंपल अगर फ्रूट को मार्केट में दे रहे हैं तो काफी सारा कंपटीशन भी होता है और हमें उतने प्राइस नहीं मिल पाते, लेकिन अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करके देंगे तो हमें ज्यादा उत्पादन होगा। और हमारे कृषक बंधु अगर ऑयस्टर मशरूम भी लगा रहे हैं बागवानी के साथ, क्योंकि वो भी एक बागवानी का ही पार्ट है, तो उसको सुखा कर उसका वैल्यू एडिशन करके उसका पाउडर बना के बेचेंगे तो उससे आपको ज्यादा लाभ होगा। तो हमें इस तरीके के प्रयास करने चाहिए अपने कृषकों के लिए
1: जी, केवीके
0: इस।
1: क्या इस तरह की ट्रेनिंग कराता है ताकि किसानों को सिखाया जाए?
0: हाँ जी, केवीके में देखिए हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं जो कि हम अपने केंद्र में भी करते हैं और केंद्र के बाहर भी करते हैं, तो हम उन्हें इस तरीके की तकनीकें बताते हैं, कृषक बंधु हमसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग चाहिए कि हम कैसे कैसे सारे उपाय करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर रेनू, आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो किसान साथियों, ये थी डॉक्टर रेनू, जिन्होंने काफ़ी विस्तार से हमारे किसानों को बताया कि किस तरह से बागवानी एक बेहतर विकल्प है। खेती किसानी के साथ अगर हम बागवानी करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी आय बढ़ती है, अच्छा उत्पादन मिलता है, और हाँ, आज हम वृक्ष लगाएंगे तो आने वाले समय पर, लंबे समय तक साथियों, ये वृक्ष हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। और साथियों, जैसे वृक्षारोपण की तैयारी हमारे किसान साथी कर रहे हैं, वैसे ही आने वाला समय खरीफ में धान का है, तो कौन सी प्रजाति धान की लगानी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो, ऐसा भी कुछ हमारे किसानों के मन में चल रहा है, तो कुछ प्रजातियों के बारे में हम बताएंगे, और खास तौर पर जो प्रजातियां उत्तराखंड में लगाई जाती हैं जिनके कई सारे औषधीय गुण हैं। जैसे देहरादून की हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रचलित बासमती की बात करें तो देहरादून बासमती के नाम से वो जानी जाती है। हमारे किसान इसको खूब लगाते हैं क्योंकि इसमें एक तो बेहतरीन सुगंध है और इसके जो लंबे दाने हैं साथियों, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। दूसरा साथियों, साठी धान की बात करें, हमारे पहाड़ों में तो आपने खूब सुना होगा कि जो साठी धान है

कई सारे रोगों में साथियों, जैसे गठिया है, डायबिटीज है, इन रोगों में भी साथियों आप इसका सेवन कर सकते हैं। औषधीय गुणों से इसको भरपूर माना जाता है, और इन्हीं औषधीय गुणों से भरपूर अगर हम एक और प्रजाति की बात करें तो कफलिया जो धान है, ये भी साथियों अपने औषधीय गुणों के लिए माना जाता है। और साथियों अगर आप अभी धान की प्रजातियां लगाने की सोच रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रमुख प्रजातियां हैं जिनका हम चयन करें तो अच्छा उत्पादन हमें मिल सकता है। जैसे पहाड़ी सिंचित क्षेत्रों की हम बात करें तो विवेक धान 82, ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक बेहतरीन एक प्रजाति है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है और अच्छा उत्पादन इससे हमारे किसानों को मिल सकता है। दूसरा साथियों, जैसे VL धान 85 है, ये कम समय में साथियों पक जाती है और ठंडे मौसम में साथियों जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ के लिए साथियों ये प्रजाति बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसी VL धान 68 है, पहाड़ी क्षेत्रों में साथियों कीटों और रोगों के प्रति इनकी प्रतिरोधी जो क्षमता है वो ज़्यादा है। गोविंद धान हमारे किसान लगा सकते हैं, जल्दी तैयार होने वाली साथियों, ये एक ऐसी फसल है जिसमें कम सिंचाई की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसी VL धान 65 है साथियों, सिंचित पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छे, अगर हम भूसे की बात करें, हमारे किसान साथी पशुपालन भी करते हैं तो इसमें अच्छा भूसा भी मिलता है, और अगर दाने की पैदावार की बात करें तो अच्छे दानों की भी हमें पैदावार मिल जाती है। इसके अलावा साथियों अगर मैदानी तराई क्षेत्रों के लिए हम देखें तो जैसे पंत धान 11 है, पंत धान 12 है, पूसा बासमती 1509 है, इन प्रजातियों को साथियों आप लगा सकते हैं। ये कम समय में तैयार हो जाती हैं और अच्छा उत्पादन ये हमारे किसानों को देती हैं। तो अगर साथियों प्रजातियों का आप चयन कर रहे हैं तो एक तो कृषि वैज्ञानिकों की आप सलाह ले सकते हैं, कौन सी प्रजाति आपके क्षेत्र के हिसाब से अच्छी रहने वाली है। कई बार हमारे किसान साथी कोई भी प्रजाति लगा देते हैं, अब आपको ये भी देखना होगा कि वो प्रजाति हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है या नहीं, कितने समय में वो पकने वाली है, जिस प्रजाति को हम लगा रहे हैं वो सिंचित भूमि के लिए है या असिंचित भूमि के लिए है। साथ ही जब भी साथियों आप बाजार से बीज लेकर आए तो एक तो आपने बीज का शोधन जरूर करना है, बीज को अगर आप शोधित करते हैं तो इससे भविष्य में कई सारे रोगों से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, इनसे साथियों आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप रोपाई करने जा रहे हैं और आपकी नर्सरी तैयार है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रोपाई अगर आप कर रहे हैं तभी आपने खेत से नर्सरी निकालनी है, ये नहीं आपने 2-3 दिन पहले खेत से नर्सरी निकाल दी और उसके बाद आप उसकी रोपाई कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके अगर नर्सरी आपने उखाड़ दी है तो आपको तुरंत उसको लगा देना है। साथ ही जड़ों का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, ऐसे पेड़ों का रोपण ना करें, ऐसी पौध ना लगाएं जिसकी जड़ टूटी हो, या तो आप उनको अलग कर दें पौध निकालते समय ही, या फिर अगर उनकी जड़ टूट गई है तो ऐसी पौध को आप अलग कर दीजिए। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में एक तो गलन की समस्या कम आने वाली है और अच्छा हमारी धान की फसल से हमें उत्पादन मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपको यहीं पर अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते हम अपने किसान साथियों को जरूर कहेंगे कि आप हमें पत्र निरंतर लिखें, आपके पत्रों का साथियों हमें इंतजार रहता है, और पत्र तो आप सीधे हमें jagatkrishi@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। इसी के साथ भैया विकास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नवदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात तक 135वां अंक में देश विदेशक जानिन थे अपन विचार साझा करें। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवालल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करने। बागेश्वर जिले में आयुष्मान भारत योजना के भीतर एल जाने 37,500 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाई गई और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के भीतर प्रदेश भर में 5 साल तक अकनांतिनों के पोलियोरोधी दवा खुराक पिलाई गई। और अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जूनक महन में स्वदेशी C-295 विमानक पहली उड़ानक दगड़ ही भारतल विमानक क्षेत्र में एक ठुल सफलता पाई। आज आकाशवाणी बठे मन की बात कार्यक्रम में उनल को कि यो बखत देश में S-40 और विमान बनाई जाणान। श्री मोदी को कि येल बहुत नान मध्यम उद्यम क्षेत्र और एयरोस्पेस क्षेत्र के तेजी मिलण रोजगारक नयू अवसर ले सजित होणेन और आत्मनिर्भर भारतक संकल्प ले मजबूत होणो।
2: हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहाँ INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है।
1: वहीं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामिल रुड़की में कार्यकर्ताओं दगड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रमक 135वें संस्मरण के सुनो और यो मौक पर मुख्यमंत्री श्री धामिल को कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम जन भागीदारी के सशक्त बनून और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए जी प्रेरित करण का प्रभावी माध्यम बन गयो। मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री संदेश सपनक प्रयास की भावना के और ज्यादा मजबूत करण और समाजक हर वर्ग के सहभाग भागिता ही विकसित भारत तक संकल्प के साकार करी जा सकल। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवालल को कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करने। उनल को कि कैंची धाम क्षेत्र में पर्यटन की संभावना के देखभीर या आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, श्रद्धालुओं के लिए भल व्यवस्था और ऊर्ज बढ़ून पर काम करी जल। श्री मेघवाल आज नैनीताल पूजीन और उनल प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर पूजबीर बाबा नीम करौरी महाराजक दर्शन करीन और पूजपाठ ले करी। यो बीच उनल को कि कैंची धाम न केवल आस्था केंद्र छु बल्कि विश्व भरक श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत ले छु। यह पहली सांसद अजय भट्टल केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री हल्द्वानी पूजन पर उन्हें स्वागत करो और यो बीच श्री भट्टल को की मेघवालक प्रशासनिक अनुभव एवं राष्ट्र हितक प्रति समर्पण सपनक लीजिए प्रेरणा स्रोत छु।
3: दर्शन करने का जब मानस बना तो वहाँ सबने का आदेश हो रहा है और यहाँ हम आए बहुत अच्छा लगा। बाबा के उपदेश के बारे में बहुत सुना था। यहाँ देश विकसित भारत बने, ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में सबसे तेज गति से उन्नति करे, ऐसी बाबा से प्रार्थना की है और देश में खुशहाली बने रहे, ऐसी भी प्रार्थना है।
1: केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर कक्षा 7 तक छात्र कार्तिकेय रावल 55वां केंद्रीय विद्यालय संगठन संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 तक बैडमिंटन स्पर्धा में बहुते भल प्रदर्शन कर बेर स्वर्ण पदक जीतो। यो उपलब्धि दगाड़ वैक चयन केंद्रीय विद्यालय संगठनक राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता अगले जिले है गयो। कार्तिकेयक यो उपलब्धि पर स्कूल में खुशीक माहौल छू और स्कूलक प्रधानाचार्य व सपे मासा बहन जील विके बधाई दी बेर उज्जवल भविष्यक शुभकामनाएं दे। कार्तिकेय अपूर्ण सफलताक श्रेय अपुन बाबू भरत रावल, कोच अनिल तड़ागी व स्कूल बठे मिली मार्गदर्शन, सहयोग और लगातार प्रोत्साहन के दियो।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: बागसर जिले में केंद्र सरकारक महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनाक जरूरतमंद लीजों संजीवनी साबित होने। जिला अस्पताल बागेश्वर में एल जाने 37,500 है जात आयुष्मान कार्ड बना है लेकिन जेल ठोल संख्या में जानेनों के मुफ्त इलाज सुविधा ले मिलने। यो योजना के भीतर कुल 6,000 है जात मरीजों को उपचार कर हालो। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तपन शर्माल बताए कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में लगभग 70% मरीजों को उपचार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम करी जानो।
5: जिला अस्पताल बागेश्वर में आयुष्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही सारे लोगों का इलाज हो रहा है। मैं जहां तक समझता हूं लगभग 70% जो भर्ती हैं मरीज वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत ही होते हैं। वर्तमान में जो हमारा जो फिगर है जिला अस्पताल बागेश्वर की वो सन 2021-22 में 2942 मरीजों का इलाज हुआ था। 2023-24 में 1361 मरीजों का इलाज हुआ था। इस प्रकार से कुल अभी तक 6,060 रोगियों का इलाज हो चुका है। और इसके साथ साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत चाहे वो अस्थि रोग का हो, ऑर्थोपेडिक का हो, जनरल सर्जरी का हो या अन्य माइनर सर्जरी हो, उनका भी इलाज या ऑपरेशन उनके आयुष्मान योजना के अंतर्गत हो रहे हैं। इसके साथ साथ मरीज भर्ती भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य जो उनकी जांचें हैं जैसे कि सीटी हो गया या अन्य कोई बड़ी जांच है वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत की जा रही है।
1: वाई योजना लाभान्वित चिड़क निवासी गोविंद चौहानल बताए कि उनल अपूर्ण इजाक इलाज आयुष्मान योजना के भीतर कराए। उनल कूण छे कि अस्पताल में भल इलाज मिलनो और यो योजना आम जानिनो के लिए बहुत भल साबित होने।
6: पिछले साल एक साल पूर्व अगस्त में मैं अपनी माता जी को यहाँ जिला अस्पताल में यहाँ मैंने एडमिट करवाया जिनका कि बोन में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें एडमिट किया गया था, जिससे कि आयुष्मान कार्ड होने के कारण मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। और उसके बाद जब इनका इलाज होने के बाद मैं घर ले गया, घर ले जाने के बाद जब पिछली बार इस बार अप्रैल के महीने में इन्हें फिर से तकलीफ हुई तो फिर से मैंने आयुष्मान कार्ड का उपयोग करते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेवाएँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुझे प्राप्त हुई हैं।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियानक भीतर प्रदेश भर में 5 साल तलक नानतीनों के पोलियो रोधी दवा खुराक पिलाई गई। देहरादून में महात्मा गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय बैठे नानतीनों के पोलियो रोधी दवा पिलाबेर अभियान को शुभारंभ करी गयो। एक दगड़ ही चमोली, नई टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अगदगढ़ सपे जिलों के आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों में नौनिहालों के पोलियो रोधक दवाई पिलाई गई। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रमक 135वां अंक में देश विदेशक जानिन थे अपन विचार साज करिन। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करने। बागसर जिले में आयुष्मान भारत योजना का भीतर एल जाने 37,500 है जात आयुष्मान कार्ड बनाई गई और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के भीतर प्रदेश भर में 5 साल तलक नानती के पोलियो रोधी दवा खुराक पिलाई गई। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यो खत्म भयो। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:40 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वर में ये खूबसूरत गीत फिल्म मिशन कश्मीर से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

दर्शन रावल और अंतरा माली की सुर में ये अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लव आजकल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं काव्यांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पुष्पा रानी वर्मा का काव्य पाठ।
1: मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ फुटपाथ की कलियाँ। फुटपाथ

कलियां हैं ये खिले बिना बिक जाती हैं। शासन और सत्ता की बातें यहाँ समझ ना आनी है, जिस भूख से

अब मैं अपनी दूसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है देवभूमि का गौरव। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तर

भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तराखंड महान है। देवभूमि का गौरव गंगा संस्कृति की पहचान है। उत्तराखंड की एक और पहचान है कांवड़ की यात्रा, जो प्रतिवर्ष सावन के मेले में शुरू होती है। मैं उसका एक शब्द चित्र गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। हरे

भेद मिटा ऊंच नीच का मान नहीं, नहीं है कोई रिश्ता नाता, बाप न कोई है माता, भोला और भोली के सिवा दूजा नाम नहीं आता। सजी हुई भोले की झांकी, सजी हुई

0: मेरी अगली कविता का शीर्षक है जीवन धारा। सूख रहे तालाबों ने, शांत हो रहे झरनों ने, कृशकाय नदियों ने फटी हुई जमीन से पुकारा है, जल ही जीवन का एकमात्र सहारा है। जल ही जीवन का एकमात्र सहारा है। शहर हो रहे हैं जलविहीन, शुष्क पड़ रही है जमीन, सूरज का बढ़ रहा ताप, जंगलों में सुलगती आग, वृक्षों का अतिशय कटान, अतिवृष्टि और तीव्र तूफान, छीन हो रही जलधाराएं, पिघल उठी हैं हिमशिलाएं, ये तो महाविनाश का इशारा है। जल ही जीवन का एकमात्र सहारा है। प्रदूषित हवाओं ने, छितरी हुई छाओं ने, भूपरपटी के घाव ने, कपकपाती धरा से उचारा है। जा से जल, ई से ईश्वर, वा से वन, ना से नदी, जब मलते हैं तभी जीव पनपते हैं। जा से जल, ई से ईश्वर, वा से वन, ना से नदी, जब मलते हैं तभी जीव पनपते हैं। मानव ये क्यों नहीं समझते हैं? कर रहे प्रकृति का नृत्य ह्रास, खंगाल रहे हैं धरा आकाश, कहाँ है जीवन की आश? धरा पर ही तो जल की अमृत धारा है। धधक उठी धरा, तो क्या तुम्हारा क्या हमारा है? जल से ही प्रकृति का हर नजारा है। जल ही जीवन का एकमात्र सहारा है।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पुष्पा रानी वर्मा का काव्य पाठ। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत राजेंद्र और नीना मेहता की गाई चंद गजलें। समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम स्पॉटलाइट आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रविवासीय संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब एक नज़र डालते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्याल संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे प्रीति सिस्टर्स के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत सुबह 7:30 पर। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून सुनना ना भूलिएगा सुबह 8:30 पर। और सेहत कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:45 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या और ऋतुचर्या पर डॉक्टर शालिनी कोठियाल से बातचीत। कार्यक्रम घर गृहस्थी के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे आधुनिक कृषि और AI विषय पर डॉक्टर किरण पंत से भेंट वार्ता। और शाम 7:50 पर RNU देहरादून का विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण आप सुन सकेंगे। रात्रि 8 बजे कल आप सुनेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उभरती हिंदी पत्रकारिता विषय पर श्री रजनीश कुमार त्रिवेदी की वार्ता। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 100.5 MHz पर या आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में राजेंद्र और नीना मेहता के गाई चंद गजलें।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत राजेंद्र और नीना मेहता के युगल स्वर में गाई चंद गजलें।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की युगल सुर में ये गीत फिल्म दिल एक मंदिर से। आइए अब सुनते हैं फिल्म तमाशा का ये अगला गीत अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की स्वर में।

श्रोताओं, अभी तमाशा फिल्म से पहले अभी आपने सुना था दिल एक मंदिर फिल्म का गीत रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। इसके बोल थे और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याग्निक के युगल स्वर में तमाशा फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत साजन फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
2: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव. वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियालिटीज. वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली.
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी. श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है. गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है. श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है. श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है. श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है. मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए. गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया. ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा. इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे. कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है. नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही. उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
3: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, 1 पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
4: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermeni in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi term.

अभी आप सुन रहे थे फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के से ये गीत। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल, मनोहर शेट्टी और कविता कृष्ण मूर्ति की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म कल हो ना हो से। आवाज़ है सोनू निगम की।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत फिल्म रोग से। आइए अब सुनते हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में ये खूबसूरत गीत, फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। पंडित सुधीर पांडे इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट तबला वर्चुओसो। ही रिसीव्ड हिज रिगरस ट्रेनिंग फ्रॉम हिज रेवर्ड फादर एंड गुरु लेट पंडित अर्जुन पांडे एंड हिज दादा गुरु पंडित भागवत सिंह, इनहेरिटिंग द रिच ट्रेडिशंस ऑफ द बनारस, डेली एंड अजराड़ा घरानाज। Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs and music lovers alike.
1: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया। पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
2: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. He is presenting tabla recital in taal, teen taal.

धा धटे धटे धटे तुन्ना कटे धा कटे धा कटे दिन नडा ने तक धा तिन नाकत तरकट धरकट धरकट धरकट धा तकट धा धरकट धा तकट धा धरकट धा तकट धा धरकट धा तकट धा धरकट धा तकट धा धरकट धा तकट धा धरकट धा तकट धा।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mrudangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mrudangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mrudangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein unhone vikhyat mrudangavidwan श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री एम के आर प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमुड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एन एस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टी वी शंकर नारायण, Sri T. N. Sheshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N. S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhag liya. आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Astana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
4: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याण रामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
3: Tonight, Sri N. S. Kalyanaraman begins his Laya Vinyasam on Mrudangam with Mishra Jati Jampetalam.

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognises that our futures are interconnected and interdependent. On the sidelines of the Seychelles visit, Prime Minister Narendra Modi met Mauritius Prime Minister Dr. Navin Chandra Ramgoolam today. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. Prime Minister Modi underscored the importance attached by India to the development and progress of Mauritius, noting that the ongoing bilateral projects will contribute to Mauritius' healthcare, connectivity, sustainable development and blue economy. India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah